0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে বা নদীতে মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে তাদের জন্য এক সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, 9 সেপ্টেম্বর থেকে 11 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বাংলাদেশ উপকূল এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর উপসূকূলে 35 থেকে 45 কিলোমিটার বেগে এবং মাঝে মাঝে তা বেড়ে 55 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের এই কারণে 11 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই বৈষ্ণবী। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से

0: यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISET संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur to Jharsuguda, 4th line, Katni to Pendra Road, 4th line, and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bengarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur.

श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत सभी माताएं अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहां आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए

0: राज्यानां चतुर्दश जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः संसूचितवान् यत् मुम्बई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् अष्टचत्वारिंशत्तम विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं एकादश नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य द्वाविंशतितः सप्तविंशति दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इंडिया इत्येतत् चतुष्षष्टि कौशलेभ्यः त्रिषष्टि कौशलेषु प्रायः सप्तति प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा विविधता पूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्रीगोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुम् आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मन्त्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.65 लाख करोड़ रुपये अनुमानित वित्त व्ययेन केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन ओडिसायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्तवर्ण परा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1,021 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली

में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी MCD ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलों पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरल में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला

0: किया है, इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित

0: के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश।

0: ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधे उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semi-final at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakulam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bangarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages, having a population of about 52 lakhs.
3: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get

आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम रसधारा की शुरुआत करते हैं इस मधुर तराने से।

दरअसल जिंदगी कभी धूप जैसी लगती है तो कभी अचानक बादलों से घिर आती है, और कभी लगता है कि रास्ते बिल्कुल साफ है और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। और आज की हमारी रसधारा इसी भरोसे, इसी उम्मीद और इसी सकारात्मक सोच के नाम है। आज हम बातें करेंगे उम्मीद और सकारात्मक सोच जिंदगी को नई दिशा की ओर। उम्मीद का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, और सकारात्मक सोच का अर्थ यह भी नहीं कि हम हर कठिन परिस्थिति को नजरअंदाज कर दें, बल्कि सकारात्मक सोच का एक अर्थ यह है कि मुश्किल को स्वीकार करते हुए भी हम यह विश्वास बनाए रखें कि स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। कभी कभी जिंदगी में हमें बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा कदम, एक नया प्रयास, एक सही फैसला, और कभी कभी केवल इतना ही कहना काफी होता है, मैं फिर कोशिश करूंगा। तो आज के इस सफर में हम बात करेंगे आत्मविश्वास की, धैर्य की, असफलताओं से सीखने की, और इस उम्मीद की जो मुश्किल समय में भी हमारे भीतर एक छोटी सी रोशनी जलाए रखती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है।

फंस गई थी। दोस्तों, हम अक्सर सफलता को अंतिम परिणाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा में प्रयास, सीखना और असफलताओं से आगे बढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। किसी परीक्षा में मनचाहा परिणाम ना मिलना, नौकरी में असफल होना, किसी रिश्ते में निराशा मिलना या किसी योजना की उम्मीद के मुताबिक सफल ना होना, ये सभी अनुभव हमें प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे समय में अपने मन की भावनाओं को पहचानना जरूरी है। परेशान है तो ये मानना ठीक है कि हम परेशान हैं, दुखी है तो अपने दुख को महसूस करना भी स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक सोच का अर्थ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह कोशिश करना है कि हम कठिन भावना में फंसे ना रह जाए और धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़े। कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना मददगार हो सकता है, कभी थोड़ी देर आराम करना जरूरी होता है और कभी अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना आसान बनाता है, और कभी बस इतना करना होता है कि आज का दिन आज के हिसाब से जिया जाए। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला 9:22 और 20 सेकेंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा अपनी दोस्त ज्योति के साथ।

आवश्यक सूचना 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपरा 12:30 मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाक घरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास सहायक निदेशक डाक सेवा मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR Avenue कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmgwb@indiapostpost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायत

से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212061 अथवा 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त।

दोस्तों, उम्मीद बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ी ताकत छिपी है। उम्मीद हमें यह सोचने की जगह देती है कि आज की स्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले, उसके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। या फिर दूसरा, इस बार परिणाम अच्छा नहीं आया, मुझे अपनी तैयारी का तरीका बदलना होगा। इन दोनों वाक्यों में परिस्थिति वही है, लेकिन सोच का तरीका अलग है। और यही फर्क कई बार हमारी अगली दिशा तय करता है। सकारात्मक सोच हमें समस्या से भागना नहीं सिखाती, वो हमें समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना सिखाती है। इसलिए जब अगली बार कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, इस स्थिति में मेरे हाथ में क्या है? जो हमारे नियंत्रण में है उस पर काम कीजिए, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर खुद को लगातार दोषी ठहराने से बचिए, क्योंकि ये छोटा सा बदलाव हमारी सोच को अधिक व्यवहारिक बना सकता है।

जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे तब खुश होंगे, जब अपना घर होगा तब खुश होंगे, और जब कोई बड़ा सपना पूरा होगा तब खुश होंगे। लेकिन जिंदगी केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। आज समय पर उठना भी एक उपलब्धि हो सकती है, किसी जरूरी काम को पूरा करना भी, किसी से प्यार से बात कर लेना भी, किसी पुराने डर का सामना करना भी। इन छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानना हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा दे सकता है। दोस्तों, हम सभी के मन में कभी ना कभी नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आज कुछ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे विचार आना अपने आप में असामान्य बात नहीं है, लेकिन एक विचार को अंतिम सत्य मान लेना अलग बात है। जब मन कहे मैं असफल हूँ, तब खुद से पूछिए क्या मैं हर काम में असफल हूँ या केवल इस एक काम में मुझे सफलता नहीं मिली। और जब मन कहे मुझसे नहीं होगा, तो कहिए शायद अभी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या मैं सीख कर दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। या फिर जब मन कहे सब खत्म हो गया, तो एक पल रुककर पूछिए क्या वास्तव में सब खत्म हुआ है या अभी भी मुझे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार हमारे विचार परिस्थिति को और भी भारी बना देते हैं, इसलिए अपने आप से बात करते समय भाषा पर ध्यान देना भी उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, ये कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन सोच को अधिक संतुलित और समाधान केंद्रित बनाने की दिशा में एक छोटा कदम जरूर हो सकता है। क्योंकि असफलता शब्द सुनते ही अक्सर मन में निराशा पैदा होती है, लेकिन क्या हर असफलता वास्तव में अंत होती है? कई बार नहीं। एक कोशिश का सफल ना होना हमें यह बता सकता है कि अगली बार हमें क्या अलग करना है। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही है तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर पढ़ाई का तरीका परिणाम नहीं दे रहा है तो तरीका बदला जा सकता है। किसी लक्ष्य तक पहुंचने में समय लग रहा है तो धैर्य रखा जा सकता है। गलती से सीखना और उसी गलती को बार बार दोहराने से बचना भी प्रगति है। इसलिए अपनी पुरानी असफलताओं को केवल पछतावे की तरह मत देखिए। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना इसलिए भी जरूरी होता है कि हमें समझ आए कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। शायद जिस समस्या ने कुछ साल पहले आपको पूरी तरह तोड़ दिया था, आज उसी जैसी परिस्थिति का सामना आप कहीं ज्यादा समझदारी से कर पाते हैं। यही अनुभव है, यही विकास है, और यही जिंदगी की सीख भी है।

कि दोस्तों आपके विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमें हर समय अपने बारे में निश्चितता महसूस हो। कभी कभी आत्मविश्वास का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि डर के बावजूद हम अपना अगला कदम उठाते हैं। नया काम शुरू करने से डर लग रहा है, फिर भी शुरुआत करते हैं। लंबे समय से टाला हुआ काम करना, अपनी गलती स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। हाँ, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। परिवार, मित्र, शिक्षक, सहकर्मी और भरोसेमंद लोग कठिन समय में हमारा सहारा बन सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति लगातार उदासी, निराशा, अत्यधिक चिंता या रोजमर्रा के कामों में कठिनाई महसूस कर रहा हो, तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी एक उचित कदम हो सकता है। अपने मन की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर की देखभाल करना। तो दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि एक नई शुरुआत के लिए, एक नए साल के लिए कोई खास तारीख चाहिए, लेकिन सच यह है कि नई शुरुआत के लिए किसी खास दिन का इंतजार जरूरी नहीं। हम आज से शुरुआत कर सकते हैं। एक आवेदन कर, एक अधूरा काम करके, या एक माफी मांगे, या फिर एक नया कौशल सीखकर। हो सकता है शुरुआत बहुत छोटी हो, लेकिन छोटी शुरुआत भी शुरुआत होती है। क्योंकि याद रखिए, उम्मीद का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा। उम्मीद का मतलब है कि मुश्किल रास्ते पर चलते हुए भी हम आगे बढ़ने की संभावना को जीवित रखते हैं। तो श्रोताओं, आज की हमारी रसधारा में

हमने बात की उम्मीद की, सकारात्मक सोच की, आत्मविश्वास की और नई शुरुआत की। जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते हम, लेकिन कई परिस्थितियों में यह तय कर सकते हैं कि हम उसका सामना किस तरह करेंगे। जब रास्ता मुश्किल हो तो थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, अपनी स्थिति को समझिए, जरूरत हो तो मदद लीजिए और फिर एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। अपने सपनों को समय दीजिए, अपनी कोशिशों को सम्मान दीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए और सबसे बढ़कर अपने भीतर की उम्मीद को पूरी तरह बदलने बुझने मत दीजिए। तो इसी खूबसूरत उम्मीद के साथ आज की रसधारा से मुझे दीजिए इजाजत। आज की एक बात अपने साथ जरूर ले जाइए कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उम्मीद हमें उनके बीच रास्ता तलाशने की ताकत देती है। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए और जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना मत भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए उम्मीद को थामे रखिए, सकारात्मक सोच को साथ रखिए और जिंदगी को हर दिन एक नई दिशा देने की कोशिश करते रहिए। दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
2: Women, we open their bank accounts.
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसोरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता

वीडियो में 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचार चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:16:27 हो रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचेता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, और मैं हूं आपके रूबरू, आपकी हरदिल अजीज दोस्त शाइस्ता नाज। अब सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज करती हूं आईना से। आईना में आज आप समाअत फरमाएंगे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोविंद वल्लभ पंत की पर। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की। दोस्तों, जिंदगी कुदरत की वो खूबसूरत नेमत है जिसकी कदर हमें अक्सर मुश्किल वक्त को गुजर जाने के बाद महसूस होती है, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी परेशानियों, तन्हाई, नाकामी या जहनी दबाव में इस कदर घिर जाता है कि उसे आगे की कोई राह दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही लम्हात में किसी का एक जुमला, एक फ़ोन कॉल, एक तवज्जा भरी गुफ्तगू और एक मोहब्बत भरा साथ जिंदगी की तरफ वापस आने का रास्ता बन सकता है। आज आलमी यौम इंसदाद खुदकुशी का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खुदकुशी की रोकथाम सिर्फ माहरीन या अदारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब अपने अपने दायरे में किसी की जिंदगी को सहारा दे सकते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आपके आसपास कोई शख्स पहले जैसा नहीं रहा? वो खामोश रहने लगा है, लोगों से दूर हो रहा है, मुश्किल मसलसल बायूस दिखाई देता है या कहता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे वक्त में उसे ये कहने के बजाय कि इतना मत सोचो या सब ठीक हो जाएगा, कभी सिर्फ इतना कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम बात करना चाहो तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। किसी की बात सुनना मामूली अमल लग सकता है, लेकिन परेशानी में मुबतला इंसान के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। याद रखिए, जहनी तकलीफ भी जिस्मानी तकलीफ की तरह हकीकी होती है। अगर कोई शख्स शदीद जहनी दबाव या ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के ख्यालात से गुजर रहा हो तो उसे तन्हा ना छोड़ें। किसी काबिल एतमाद फ़र्द जहनी सेहत के माहिर या मुकामी हंगामी इमदादी खिदमत से फौरी राब्ता करने में उसकी मदद करें, और अगर आप खुद किसी मुश्किल दूर करने से मुश्किल से गुजर रहे हों तो मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। मदद मांगना दरअसल ज़िंदगी को एक और मौका देना है। दोस्तों, हम किसी की खामोशी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम फैसला सुनाने के बजाय सुनने की कोशिश करेंगे। हम मुश्किल वक्त में अपने लोगों का हाथ थामेंगे, और सबसे बढ़कर हम ये पैगाम आम करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, मदद मौजूद है, उम्मीद मौजूद है, ज़िंदगी कीमती है। तो उससे एक छोटी सी मदद, ज़रूरी नहीं कि आप

बड़ी बड़ी मदद करें, लेकिन एक छोटी सी मदद, छोटा सा सहारा किसी की जान बचा सकता है, किसी की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है। आलमी यौम इंसदाद खुदकुशी में हमें ये पैगाम देता है कि कभी कभी ज़िंदगी बचाने के बड़े अल्फाज नहीं, सिर्फ एक छोटी सी तवज्जो, एक हमदर्दाना गुफ्तगू और वक्त पर मिलने वाली मदद काफ़ी होती है। तो दोस्तों,

0: सही है। मन खुश है तो शरीर भी चलता रहता है, मन अगर दुखी है तो हम लोग शरीर भी छोड़ देते हैं। और मन के ऊपर हम लोग की इम्यूनिटी पावर भी डिपेंड करता है। आपका मन सही रहता है तो बॉडी के इम्यूनिटी भी डेवलप होता है, हम लोग के जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो भी थोड़ा सिक्रिएशन ज्यादा होता है पॉजिटिव हार्मोन्स, जिस वजह से हम लोग की इम्यूनिटी इंक्रीज होते हैं और बॉडी फाइट करने लगते हैं। तो ये सबका भी समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, अपकमिंग में एक बॉन्डिंग एक टॉपिक है, बॉन्डिंग एक फील्ड है जो यहाँ पे मेजोरिटी लोग फंस चुके हैं। और ज्यादा स्ट्रेस होने से क्या होता है, वहां से आपको कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप होता है, आपको शुगर डेवलप होता है, सारे चीज डेवलप होता है, तो आपको फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रहा है। अब मन दुखी होने से क्या क्या होता है, लोग नशे में चले जाते हैं, जैसे अभी आप सुसाइड बोले ये भी लोग करने चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को पूरे वर्ल्ड बोलिए, दुनिया बोलिए, उसके साथ हम लोग के भारत बोलिए, हम लोग के सरकार बोलिए, सबने इसको फोकस दिए है और ये प्राइमरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में है अभी के लिए।
1: अगर देखा जाए कि सुसाइड को हम लोग एक छोटे वर्ड में समझा नहीं सकेंगे, इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई मेडिकल इश्यूज होता है, सोशल प्रेशर होता है, इकोनॉमिक प्रेशर है, बहुत सारा, तो इसके क्या क्या कारण है?
0: कारण देखिए, कुछ एक कारण से कुछ नहीं होता, कारण बहुत सारे हैं और बहुत सारे मिलके एक इफेक्ट होता है जहाँ पे लोग जाके सुसाइड ये अटेम्प्ट करते हैं, क्या कर लेते हैं। अगर हम लोग खुद को पूछेंगे, हम लोग हमारे आसपास जितने भी हम लोग के फ्रेंड्स बोलिए, दोस्त बोलिए, जो परिवार के लोग बोलिए, जिसको जिसको पहचानते हैं हम लोग, कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन में हर एक इंसान ये दुनिया में कभी ना कभी एक बार ने एक बार सोचे जो और नहीं हो रहा, इससे अच्छा तो मर जाते तो अच्छा होता। तो ये क्या होता है, जो सुसाइड बहुत सारे कारण से होते हैं, जहाँ पे आप एक साइकोलॉजिकल सोचिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वहाँ पे इसका एक कारण होता है, डिप्रेशन में होते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है वहाँ पे देखा जाते है, सिजोफेनिया में होते है। और ये छोड़ के बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी होता है, जहाँ पे आपका फैमिली होता है, कोई अपना पर्सन चला गया है जो मैं मान नहीं पा रहा हूँ और जिसके बिना मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ये होता है। किसी का ब्रेकअप हो गया जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको लग रहा है अभी क्या है। किसी के इकोनॉमिकल प्रेशर होते हैं, जहाँ पे हम लोग फार्मर को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे देखते हैं, जो किसी का नौकरी चलेगा ये रिसेशन के वजह से, कुछ कारण के वजह से, तो वो लोग ने किसी ने सुसाइड कर लिए। स्टूडेंट के अंदर जाते हैं तो स्टूडेंट के भी देखते हैं, जो स्टूडेंट लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो ये ना एक होलिस्टिक एक प्रेशर रहते हैं उन लोगों के ऊपर, और जहाँ पे इनको लगता है जो और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग फंस गए, एक टनल विजन जैसे होते हैं, जैसे वो घोड़े के पास लगा रहता है ना, जो घोड़ा एक ही चीज देखते हैं और कुछ नहीं है दुनिया में, वो छोड़ के, वो रास्ता छोड़ के। तो उस टाइम में ना हर आदमी के अंदर ऐसा वाला एक विजन डेवलप हो जाता है, उसको लगता है और कुछ नहीं है मेरे पास, मैं चला जाऊंगा तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा होगा और मेरे घर वालों के लिए भी अच्छा होगा, इतना पेन मैं नहीं ले पा रहा हूँ और घर वालों को भी पेन नहीं देना है। और अगर देखा जाए तो सच में उतना कुछ नहीं हो रहा है, मगर उसको लगता है ये हो रहा है, जिसके कारण है वो विजन एग्जीक्यूशन, जो मेरा पास एक प्रॉब्लम आया है तो उसको मैं कैसे सॉल्यूशन में जाऊँ, अगर नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, दूसरे कुछ करूंगा, मुझे वो करना ही है, किसी ने मुझे तो सौगंध नहीं दिया, किसी ने मुझे तो कसम नहीं दिया जो मुझे करना ही है, मुझे इतना आन करके लाना ही है, ये तो मैंने जब मेरा जन्म हुआ था मैं किसी से एग्रीमेंट करके नहीं आया था ना, जो मुझे ये करना ही है। सोचिए मुझे डॉक्टर बनना ही है, जैसे स्टूडेंट लोगों के पास प्रेशर रहते हैं फैमिली से, आसपास के लोग, तुमको डॉक्टर और इंजीनियर, अरे ये छोड़ के भी तो बहुत सारे स्ट्रीम है जहाँ पे आराम से लोग गुजारा करते, आराम से लोग चलते हैं, तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बहुत सारे आईएफएस है, प्राइवेट जॉब है, बहुत सारे लुक्रेटिव चीज है। अब हर पेरेंट्स को पूछेंगे तो क्या डॉक्टर क्या इंजीनियर, ये क्या मैं एग्रीमेंट करके आया था जब मैं जन्म लिया था जो मुझे यही बनना है। तो ये एक होलिस्टिक प्रेशर होता है और जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, इसको हम लोग कॉग्निटिव एरर भी बोलते हैं, जो वो थॉट से वो लोग नहीं निकल पाते, वो नेगेटिविटी से नहीं निकल पाते, जहाँ पे ये डेवलप हो जाते।
1: तो ऐसे बच्चों के साथ जहाँ सोशल या फैमिली प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं।
0: एकदम ऑब्वियसली, आपके पास जब रिसोर्स नहीं रहेगा, आपके आसपास के लोग ही तो आपके मेन सपोर्ट सिस्टम है, प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम है, सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या काउंसिलर है, जो साइकियाट्रिस्ट है, जो लोग मेंटल हेल्थ लेके काम करते हैं, हम लोग सेकेंडरी में आते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो होता है वो घर वाले होते हैं, जिनके पास वो लोग पहले जाते हैं, वहां से घर वाले

0: लोगों के पास लेके आते। अगर घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के जो रिलेटिव है, वो लोग अगर ये चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम लोगों के पास आएंगे? इसके इम्पोर्टेंस ही अगर वो लोग नहीं समझ रहे, जो कुछ नहीं होते छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, तो ये बोलने से कैसे चलेगा? मेंटल हेल्थ को अगर हम लोग रिस्क फैक्टर को पकड़े, क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोले, जो स्किजोफेनिया, बाइपोलर, ये जो डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें क्या होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूशन होते हैं, एक वॉयस आता है कान में जो खुद जाओ, तो ये बीमारी के वजह से लोग ऐसे स्टेप ले लेते हैं, कर जाते हैं, जहाँ पे उनको वो रियलिटी टच नहीं रहता है। डिप्रेशन में क्या होता है, लोग इतना लोनलीनेस डेवलप हो जाता है, तो उसको वो अकेलापन महसूस होता है, जो मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, एक होपलेसनेस आता है, मैं रह के क्या करो, मेरा कोई अहमियत नहीं है, तो ये सारी चीज में जाके लोग फिर एंड में सुसाइड कर लेते हैं। ये तो गया डिजीज रिलेटेड, मतलब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम डिसऑर्डर है वो कनेक्टिंग, ये छोड़ के भी लोग सुसाइड करते हैं जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। उस वहां पे आते हैं ये जो हम लोग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी बोल रहे थे, क्या जो इम्पल्सिविटी बोलते
1: जी।
0: किसी ने मोबाइल मांगा, उसके घर वाले नहीं दिए, कुछ कर लिए, गाड़ी मांगा, बाइक मांगा, घर वाले नहीं दिए, तो सुसाइड कर लिए, तो ये जो इम्पल्सिव एक्ट है, तो ये इम्पल्सिव
1: एक्ट आउट ऑफ एंगर एकदम,
0: हाँ, जो ये रिजेक्शन ना नहीं सुन पाती ये लोग, जो मैं रिजेक्शन नहीं लेना, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए कैसे भी करके लाके दो,
1: तो ये एज ग्रुप ज्यादातर हम लोग टीनेजर्स को ही देखते हैं।
0: हाँ, ये इम्पल्सिव ग्रुप जो है, ये तो टीनेज में ही ज्यादा हम लोग देखते है, और ये लोग की ना आगे जाके इंक्रीज होते है, और ये भी आप हर किसी में नहीं देखेंगे, एक पेरेंटिंग स्टाइल से ये डेवलप होते
1: हैं। एक तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि ये तो नहीं पता है कि ये बच्चा ऐसा करेगा गुस्से में आके,
0: नहीं
1: तो
0: इनको पता रहता है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता है, ये जो मैंने बोला, ये एक दिन किसी ने मांगा अचानक से, जो मुझे मोबाइल दो और मैंने ये कर लिया, ये नहीं होता, एक दिन का नहीं है ये कहानी। क्या होता है, जब बच्चे कुछ मांगते है छोटे के टाइम में, तो तुरंत दे दे, मांग रहे हैं तुरंत दे दे रहे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है, जो मैं मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो ये कंडीशनिंग बिहेवियर हो जाते, उसको एक आदत पड़ जाती है, वो ऐसे तरीके से ब्रेन सोचने लग जाते, और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है इन लोगों के ऊपर। अगर कभी ना बोल जाए, बच्चे ने थोड़ा डिमांड और कर लिया, टेंट्रम कर लिया, तो तुरंत मम्मी पापा ने दे दिया, तो उनको समझ में आता है, जब मैं ऐसे वाला बिहेवियर करूंगा तो ये लोग अनकंफर्टेबल होंगे, तो मुझे दे देंगे।
1: इसी एज ग्रुप से डेवलप होना शुरू हो जाए,
0: ये एकदम आप 4 साल, 5 साल, 3 साल से तो स्टार्ट हो ही जाता है, तो ये जाके जब इसका 10 साल, 11 साल ऐसा हो जाता है, तब जाके इनका डिमांड का लेवल हाई होने लगता है, और इनका ये एग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर इंक्रीज होने लगता है, तो वहाँ पे जाके इन लोगों को कंट्रोल करना दिक्कत हो जाता है। मगर ये जब डेवलप हो रहा है, इनको जब समझ में आता है, घर वालों के भी ये समझ में आते हैं, मगर उसको इग्नोर करते हैं, उसी टाइम अगर वो साइकोलॉजिस्ट बोलिए, किसी के साथ कंसल्ट करे, उसको थोड़ा थेरेपी करे, तो वो ठीक हो सकते थे। हम लोग के पास कब आते, जब ये लोग फुल डेवलप हो जाते,
1: जब वो एक डिजीज की शक्ल ले ले,
0: हाँ, जब वो लोग इम्पल्सिवली सोचे कुछ नहीं मिल रहा है तो दीवार में घुसी मार रहा है, क्या हाँ काट रहे है, पैर काट रहे है, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे बच्ची लोग, कुछ हो गया तो वो लोग अपना हाथ काटते हैं, तो ये सारे इंडिकेशन है ये सारी चीजों का,
1: मैंने इसको मैं अटेंशन सीकर भी बोल सकती हूँ।
0: हाँ बोल सकते हैं, मगर ये मेनली क्या होता है, वो लोग ना नहीं सुन पाते, इन लोगों को रिजेक्शन नहीं लेना आता है।
1: अभिषेक जी, और एक और जो अटेंशन सीकर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो एक ऐसा ग्रुप भी देखते हैं जो थोड़ा अटेंशन पाने के लिए वो अटेम कर रहा है, उसे पता है कि मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का अटेंशन मिले।
0: एकदम, जो ग्रुप को लेकर अभी डिस्कस कर रहे, तो ये लोग जो अटेम करते हैं, जो हाथ काटना, क्या पैर काटना, शरीर का डिफरेंट डिफरेंट हिस्से को ये काटते है ब्लेड से बोलिए, कुछ नुकीले चीजों से, ये लोग अपने को मारने के लिए नहीं करते, इन लोगों का क्या होता है, वो जब तक नहीं कट करेंगे तो उसका मन शांत नहीं होता, ये डराने की कोशिश करते हैं, तो वो जाके फिर एक एक्सीडेंट के रूप में वो घट जाता है। मीन ये वाला एज में ये होता रहता है, और बाकी के जो एज बोलिए जहाँ पे हम लोग के समाज रहते हैं, हम लोग के घर वाले के बहुत सारे परेशान होते हैं घर वालों को लेके, नशा भी एक कारण होता है, जो नशे के वजह से क्या होता है हम लोग के प्रॉब्लम्स की, हम लोग के सोचना ये सब में कमजोरी आ जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कर लेते।
1: अच्छा, जब आपसे मैं बात कर रही थी तो मुझे एक ख्याल आ रहा था कि हाल ही में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में सुना कि वो सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी बनी, तो सुसाइड करने का

0: स्टूडेंट्स में अगर मैं इस ग्रुप में देखती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कई बच्चे एग्जाम दिए, कई लोग फेल हुए, कुछ उसमें पास हुए, तो वो अकेला बच्चा तो नहीं है जो सफर कर रहा है,
1: एकदम, एकदम।
0: तो वो स्टेप वही क्यों उठा रहा है?
2: एकदम, ये आपने बहुत सही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा मुझसे। देखिए, ये जो सिचुएशन हम लोग सब बच्चे फेस कर रहे हैं, सोचिए 3 लाख 4 लाख बच्चे एग्जाम दिए,
0: और इसमें अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत बेचारी बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उनको है कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा या मेरे पास टाइम
2: नहीं। आप देखेंगे अच्छे से, जो एकदम जो क्राइसिस वाला बैकग्राउंड से आते हैं, जो लोग यहाँ पे ट्राई करते उन लोगों में ये ज्यादा नहीं है। यहाँ पे ज्यादा आते हैं जिसके घर वालों से ज्यादा प्रेशर रहते, जो वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, जो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है क्या इंजीनियर बनना है, और डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के दुनिया में और कुछ नहीं है, अगर तुम ये बन नहीं पाए तो तुम्हारा जीवन खत्म, और कुछ नहीं है लाइफ में। ये जब चीज घर वाले हमेशा बच्चे के कान के सामने बोलते रहते और फीट करते रहते हैं, ये एक बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है जब ये वाला चांस मेरा चला गया, इस बार तो मुझे चांस मिल गया था, नेक्स्ट टाइम अगर चांस नहीं मिले तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज पकड़ के रखा है जो मुझे डॉक्टर ही बनना है।
0: हाँ, किसी भी सूरत में,
2: किसी भी सूरत में डॉक्टर नहीं बनेंगे तो मेरा लाइफ खत्म। अगर हम लोग के घर वाले तू ट्राई कर ले भाई, हो जाता है अच्छा, नहीं होगा तो दूसरा कुछ करना है, कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे तो वो सोच डेवलप नहीं होगा और कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। अरे तुम क्या, तुम तो स्टार्ट किए हो जीरो से।
0: बिल्कुल,
2: एक आदमी पैदा होता है तो क्या लेके पैदा होता है, वो क्या अल्फाबेट जान के पैदा होता है, सर्टिफिकेट लेके पैदा होता है, कुछ नहीं होते ना। हम लोग ऐसे ही आते हैं, जीरो बन के आते हैं और जीरो बन के जाएंगे, बीच में कुछ सीख ले तो जो सीखा वही हम लोगों के सक्सेस है ना। तो फेलियर कहाँ है लाइफ में, कहीं पे फेलियर नहीं है, क्योंकि आपके घर अगर देखिए, एग्जाम ड्रॉप होना क्या, एग्जाम में फेल होना, ये अगर मेन कारण होता तो सब बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता, सबके ऊपर नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, इसके मतलब उसका जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसके आसपास के जो लोग है ये बहुत सपोर्टिव है, उसका स्ट्रांग है, इसलिए वो अहमियत नहीं, ठीक है भाई ये एक एग्जाम नहीं हुआ नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं प्रिपेयर होता हूँ, फिर मैं कर लूंगा, फिर से लोग एग्जाम दे दिए डॉक्टर बन गए। अगर बीच में से हम लोगों ने कुछ अपना लोगों को खो दिया, और इसका मेन कारण मैं बोलूंगा ये जो फैमिली बोलिए, आसपास के लोग बोलिए, समाज बोलिए, रिलेटिव्स बोलिए, इन लोग,
0: सही बात है। अभी हम लोग हाल फिलहाल ज्यादा नोटिस कर रहे हैं कि अगर जैसे इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं, चारों इंसान के पास मोबाइल है और उनके पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं है, तो वो सारा वो आपसे मिलने आए हैं, लेकिन बस मिलने के बाद वो हाथ में मोबाइल आया हुआ, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पाड़ा कल्चर जो था, अड्डा कल्चर, वो चीजें खत्म हो गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है।
2: देखिए साइकोलॉजिकली तो ये इफेक्ट है, जब हम लोग भी ये टीनेज थे, छोटे थे, हम लोग पाड़ा में बैठते तो अड्डा मारते, रॉक में बैठते तो मजाक करते थे, हंसी करते थे, ये सारे में क्या होता था, हम लोगों का जो मन के अंदर दुख रहते थे, जो भी कष्ट होते थे, वो वहां से वेंटिलेट हो जाते थे, निकल जाते थे, तो हम लोगों को एक पॉजिटिविटी डेवलप होते थे, फिर वो लेके हम लोग आगे निकल जाते थे। उसके साथ क्या होते थे, बच्चे लोग खेलते थे, हम लोग खेलते थे रास्ते में, कोलकाता में तो मार्ट ज्यादा नहीं है, ग्राउंड ज्यादा नहीं, फिर भी जितने भी ग्राउंड थे हम लोग रास्ते में खेलते थे, हर रोज खेलते थे, रेगुलर बेस में खेलते थे। अभी अब खेलने लायक कोई स्टूडेंट नहीं देखोगे, कोई बच्चा खेल नहीं रहा है, सब वो सुबह से शाम कंधे में बैग लेके दौड़ते जा रहे हैं, फिर बैग रखते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर घर में आके पढ़ते हैं, फिर बीच में मोबाइल देखने लग जाते हैं, बस सो जाते हैं, ये साइकिल है। तो आपके पास रिक्रिएशन कहाँ है, अब इंटरेक्शन कहाँ कर रहे हो, अब गप्पे कहाँ मार रहे हो। देखिए हम लोग के हर इंसान के अंदर ना एक डस्टबिन रहते हैं, जहाँ पे हम लोग के जो भी नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो डस्टबिन में सब हम लोग जमा होते रहते हैं, तो उसको भी तो खाली करना है ना, उसको तो खाली करना चाहिए, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो लोग जाके ऐसे स्टेप लेते हैं। ये सारे चीज अभी खो रहा है, अभी सब सोशल मीडिया में अटके हैं, कितने लाइक मिले, कितने कमेंट्स मिले, ये सारे में अटक गए। आप बैट लेके बैटिंग करने गए, एक छक्का मारोगे क्या, एक चार मारोगे, ये आपके हाथ में है, तो आप एक छक्का मारोगे तो आपके टीम जीत गए, आपको हाथ ताली मिले, ये आपके हाथ में है, मगर आपको एक फीड दिए वो आपको कितने लाइक मिले, कौन लाइक करे का ना करे,
0: और
2: वो
0: इस कारण से कितने इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड भी करते हैं,
2: एकदम
0: कि मुझे उसमें इतना लाइक्स नहीं मिला या मेरे इतने ये फॉलोअर्स
2: कम हो गए। लोग एक सुपरफिशियल दुनिया में फंस गए, और एक ये सुपरफिशियल लाइक यहाँ इस सारी चीज से ना अपनी इमोशन को जोड़ लिए है।

0: या पूछ रहे थे ना मेंटल हेल्थ क्यों, ये जो सारे जो लाइफस्टाइल बन गए ना इस वजह से मेंटल हेल्थ और भी इम्पोर्टेंट हो गए। पहले क्या होता था, एक फैमिली में 10-12 लोग रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहते थे, तो हर किसी के साथ किसी ने डांटा तो और की इसके पास चले गए, वो सपोर्ट दे दिया, अरे ठीक है मैं हूँ, क्यों डांटा उसको, ऐसे बोल दिए, तो बच्चे लोग एक दूसरे में जाके वो घुल मिल जाके अपना वो दुख
1: बिल्कुल
0: निकल जाता था।
1: ग्रैंड पेरेंट्स है
0: एकदम
1: है।
0: अभी क्या हुआ, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, ठीक है मैं दुखी हो गया तो मैं सुसाइड करने जा रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करते, मैं निकल जाता हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। किसी एक चीज के लिए कुछ नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं।
1: बच्चा है देखिए या घर में कोई बंदा अगर ऐसा देख रहे हैं कि वो खुद को अलग थलग कर दिया या किसी से मिलना नहीं चाह रहा, मतलब ये टेंडेंसी तो धीरे धीरे डेवलप होती है,
0: एकदम अचानक से नहीं, नहीं नहीं
1: नहीं नहीं, तो कैसे समझा जाए और कैसे इसका इससे ओवरकम किया जाए।
0: जो लोग इम्पल्सिव भी होते हैं वो एक दिन नींद से उठ के इम्पल्सिव नहीं हो जाते हैं, और जो लोग सुसाइड करने जाते हैं एंड ऑफ द डे में, वो लोग भी एक दिन में उठ के नहीं करते, ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। और हर कोई चाहते हैं जीने के लिए, हर कोई ढूंढते हैं मुझे निकलना है, मगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, हम लोगों की ये बिजी शेड्यूल में सब भागते रहते ना, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, इस वजह से हम लोगों को वो समझ में नहीं आते। पहले के ज्वाइंट फैमिली में क्या था, जो कोई बच्चा बैठा है क्या, कोई ऐसे ही बड़ा भी हो ऐसे शांति से बैठा है, तो कोई बुजुर्ग हो क्या, कोई जाके बोल क्या हुआ, तो ऐसा क्यों बैठा है, कुछ हुआ क्या, बाहर कुछ हुआ क्या, घर में कुछ हुआ क्या, तो ऐसा पूछते हैं। जिसका जो बिहेवियर होता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, कोई टॉकेटिव होते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, अकेले में चले जाते हैं, ज्यादा बातचीत करना बंद कर देते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन करना बंद कर देते हैं। मतलब हर इंसान का एक पर्सनैलिटी होता है, एक बिहेवियर पैटर्न होते हैं, तो वो पैटर्न में चेंज आ जाता है, और वो पैटर्न का चेंज क्या होता है, रिग्रेसिव टाइप हो जाता है, मतलब पीछे आ जाना, डेवलप नहीं होते, मतलब वो जो था उससे वो पीछे आते जा रहे हैं। तो घर वाले उसको अगर आइडेंटिफाई करके बात करते तो उसको वो फील होता है, जो उसके जो अंदर चल रहा है वो वेंटिलेट होते, तो उसके एक सपोर्ट सिस्टम होते, जब मैं हूँ नहीं सोचना है, चल हम लोग है ना, देखते कुछ करते, तो ये जो बोलने से क्या होता है, एक सपोर्ट होते है जो हम लोगों को वो आगे जाने में हेल्प करता है।
1: अक्सर इस पर हम लोग बातें करते हैं कि एज ग्रुप के लेके बारे में बातें होती हैं कि ज्यादातर हम लोग देते हैं कि टीनेजर्स में ज्यादा हो रहा है सुसाइड ट्रेंड, हालांकि ये बोलना गलत होगा, हर एज ग्रुप में है, लेकिन ऐसा कोई डेटा है जो हमारे पास मौजूद है जिसको आप शेयर करना चाहें?
0: देखिए ऐसे तो एज ग्रुप जो है 18 से 45 बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा मिलता है, उसको भी अगर फिल्टर करेंगे तो 18 से 30 तक आता है, तो ये एज में सबसे ज्यादा आता है। और दो चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक है जो फार्मर के लिए, एक है आईटी प्रोफेशन के लिए, और एक है ये इम्पल्सिव ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लोग काम करके मेहनत करके कुछ करते हैं, तो उन लोगों के पास मॉरल वैल्यूज, जो रिस्पेक्ट होता है खुद के, जो इज्जत बोलते हैं हम लोग, तो ये इज्जत बहुत अहमियत रखते हैं। तो जब वो इज्जत में कोई हाथ डाल देते हैं तो उनके पास क्या होता है, जो मेरे पास और रहा क्या। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों का मॉरल वैल्यूज बहुत हाई रहता है, तो ये मॉरल वैल्यूज में जब इसका हाथ आते हैं तो यहाँ पे जाके इन लोगों को दिक्कत होता है वो मानने के लिए, और वो मान नहीं पाते बोल के ये लोग जाके सुसाइड करते। कितने सारे लोग है देखिए, 100 करोड़ लेके भाग गए, बैठा है जेल में, बैठा है अपना अच्छा से खा रहा है, मजा कर रहा है, सुसाइड नहीं किया। अगर ये फार्मर लोग जिसके वजह से हम लोग
1: सेंसिटिव होते हैं
0: एकदम, और ये जो मॉरल वैल्यूज को कहाँ कहाँ छोड़ना है, ये हर टाइम ये अच्छा नहीं है, कभी छोड़ना भी चाहिए, तो इस वजह से वो लोग सोचने लग जाते, फिर ब्लॉक्ड हो जाता है माइंडली, फिर ये सोच सोच के क्या होता है, एक टाइम में जाके वो ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं।
1: अभिषेक जी एक और चीज जो मैंने ज्यादा नोटिस किया कि लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इस बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट कराया जाए, ये एक्सेप्टेंस आज भी हमारी सोसाइटी में नहीं है।
0: एकदम, क्या होता है, हम लोग मेंटल हेल्थ बोली तो हम लोग के दिमाग में आते हैं ना, जो लेमेन लोग होते हैं तो वो पागल है, ठीक है वो पागल है, मैं क्या पागल हूँ जो मैं पागल के डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे हर किसी का तबीयत खराब हुआ मतलब क्या कैंसर हो गया, ऐसा तो नहीं है हार्ट अटैक हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो भी एक बीमारी है जिसको स्किजोफेनिया, बाइपोलर ऐसे सीरियस जो बीमारी होते हैं ये, और जिसको हम लोग रास्ते में घूमने देखते हैं, वो लोगों को कोई दवाई नहीं देते, ट्रीटमेंट नहीं करते। उसको ट्रीटमेंट किया जाए, 10 दिन के अंदर कोई पहचान नहीं पाए।

0: जो ये कल घूम रहा था इधर, तू पागल से कनेक्ट कर लेते, जो ये सबसे ज्यादा गलत फहमी है। तो आप लोग डायरेक्ट उनके पास चले जाइए, खुद से जाइए, किसी की जरूरत नहीं, आप अकेले जाइए, अकेले बात कीजिए, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी का जरूरत नहीं, कोई नहीं समझ रहा है, जरूरत नहीं है, आप हम लोगों के पास आ जाइए। हर हॉस्पिटल में, इवन कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके एक मेडिकल कॉलेज में भी ये सारे फैसिलिटीज है।
1: बिल्कुल अभिषेक जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ कहने को था, बहुत कुछ सुनने को भी था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें यहीं रुकना पड़ रहा है। जिंदगी बहुत कीमती शय है और हम सबको इसकी पूरी हिफाजत करनी चाहिए। अभिषेक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुसाइड प्रिवेंशन पर एक मामूली मालूमाती बातचीत, जिसे जिनमें हमारे मेहमान थे अभिषेक हंसा और उनसे बातें कर रही थी तलत सलाउद्दीन। दोस्तों, पेश है अफरोज़ा प्रोग्राम तख्लीक़ कुदरत। इस प्रोग्राम में तख्लीक़ कुदरत, जहां हम कुदरत की उन हसीन तख्लीकात का जिक्र करते हैं जो अपने अंदर खूबसूरती, जायका, गज़ाइत और सेहत के बेशुमार राज समोए हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो बाहर से कदरे खरीरा और अजीब व गरीब दिखाई देता है, लेकिन उसे काटते ही अंदर से सफ़ेद, नरम, खुशबूदार और बेहद शीरीन गुदा हमारा इस्तकबाल करता है। जी, आज का मौजू है कस्टर्ड एप्पल, जिसे उर्दू और हिंदुस्तानी जबानों में शरीफा कहा जाता है। शरीफा एक गर्म इलाकों में पैदा होने वाला फल है। इसकी बैरूनी सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं जो उसे दूसरी फलों से मुनफरिद बनाते हैं। इसका अंदरूनी गुदा सफ़ेद, नरम और क्रीमी साख्त का होता है, इस वजह से अंग्रेजी में इसे कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। शरीफे का साइंसी नाम अमूमा स्क्वामोसा है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गर्म और नीम गर्म इलाकों में उसकी काश्त की जाती है। आमतौर पर यह फल बरसात के बाद और खजां के इब्तदाई दिनों में बाजारों में ज़्यादा दिखाई देता है। शरीफा सिर्फ जायके में ही नहीं लाजवाब, बल्कि गजाइत के अतबार से भी अहम समझा जाता है। इसमें कुदरती शक्कर, फाइबर, विटामिन सी और मुख्तलिफ मादनी अज्जा पाए जाते हैं। इसका नरम गुदा जिस्म को तवनाई फराहम करने वाली गजाइत का जरिया बन सकता है। फाइबर की मौजूदगी उसे मतवाजन गजा का एक दिलचस्प हिस्सा बनाती है, जबकि विटामिन सी जिस्म की कुदरती दफाई निज़ाम के लिए अहम गजाई जुज़ है। अलबत्ता चूँकि शरीफा कुदरती तौर पर मीठा फल है, इसलिए इसे मुनासिब मकदार में खाना बेहतर है, खुसूसन उन अफराद के लिए जो अपनी गजा में शक्कर की मकदार पर नज़र रखते हैं। सामीन, शरीफे की ख़ास बात यह है कि इसे सिर्फ फल के तौर पर खाया ही नहीं जाता, बल्कि इससे कई मज़ेदार चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। शरीफे के गूदे से शेक, आइसक्रीम, स्मूथी, डिज़र्ट और मुख्तलिफ मीठी डिशेस भी तैयार की जा सकती हैं। इसका कुदरती क्रीमी जायका उसे मीठे पकवान के लिए खासा मौजू बनाता है। शरीफा खाते वक्त उसके बीज ज़रूर अलग कर देने चाहिए, बीज सख्त होते हैं और उन्हें चबाना या खाना मुनासिब नहीं। इस तरह फल ख़रीदते वक्त ये देखना चाहिए कि शरीफा ताज़ा हो, इस पर गैर मामूली सड़न या फफूंदी ना हो, उसे साफ़ सुथरा धोकर इस्तेमाल किया जाए। शरीफे को देखकर कुदरत की खूबसूरत बात समझ में आती है, जिसमें हमेशा ज़ाहरी शक्ल का मोहताज नहीं होता। हुस्न एक खूबसूरती है जो अंदर से होती है। एक ऐसा फल जो बाहर से सादा और खदीदा दिखाई देता है, इसके अंदर कुदरत ने नरमी, मिठास और खुशबू का खजाना छुपा रखा है। शायद यही तो कुदरत तख्ली के कुदरत का हुस्न है। कुदरत में बार बार ये एहसास दिलाती है कि हर चीज़ की अपनी एक इनफरादियत है, हर फल का अपना मिजाज है और हर तख्लीक में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। तो सामीन, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल न सिर्फ एक लजीज और खुशबूदार फल है, बल्कि गजाई एतबार से भी अहमियत रखता है। इसका मुनफरिद जायका और क्रीमी साख्त उसे फलों की दुनिया में एक अलग मकाम अदा करती है। दोस्तों, ये था आज का तख्लीक कुदरत, जिसमें आप समाअत फरमा रहे थे कस्टर्ड एप्पल पर गुफ्तगु। दोस्तों, पेश है गज़ल उसने छेड़ी, जिसमें आप सुनेंगे एक खूबसूरत गज़ल। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में, तुमको देखा तो ख्याल आया।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। कलाम था जावेद अख्तर का और मौसीकी से सजाया था कुलदीप सिंह ने। फिल्म का नाम था साथ। दोस्तों पेश है इस प्रोग्राम की आखिरी गज़ल, तो चलिए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल, तमन्ना फिर मचल जाए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल कलाम था जावेद अख्तर का और मौसीकी से सजा था जगजीत सिंह ने। दोस्तों, वक्त चला है अब अगले प्रोग्राम का। अब आप सुनते रहिए अगला प्रोग्राम और अपनी दोस्त शायद को दीजिए इजाज़त। आदाब।

96.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा है मैं आज हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है क्योंकि आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये हर वर्ष 10 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसे 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग से शुरू किया और इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और ये संदेश देना कि आत्महत्या को रोका जा सकता है। वर्ष 2024 से 2026 तक इस दिवस की थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड यानी आत्महत्या को लेकर हमारी सोच और बातचीत के तरीके में बदलाव लाना। 2026 में इसका विशेष संदेश है स्टार्ट द कन्वर्सेशन यानी अर्थात बातचीत की शुरुआत करें। इसका मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जैसे संवेदनशील विषयों पर चुप्पी और शर्म के बजाय समझदारी सहानुभूति और सहयोग के साथ बात की जाए। कई बार कोई व्यक्ति अपने भीतर चल रहे तनाव निराशा या भावनात्मक परेशानी को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसे समय में परिवार दोस्त शिक्षक सहकर्मी या कोई भरोसेमंद व्यक्ति उसकी बात बिना आलोचना और बिना जल्दबाजी के सुनना शुरू कर सकता है और किसी परेशान व्यक्ति को यह महसूस कराना कि वो अकेला नहीं है मदद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे और वो लगातार निराश या अलग थलग रहने लगे अपने भविष्य को लेकर बेहद नकारात्मक बातें करे और जीवन समाप्त करने की बातें करे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में उसे अकेला छोड़ने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। और याद रखिए मदद मांगना कमजोरी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही महत्वपूर्ण है। किसी कठिन दौर से गुजर रहे व्यक्ति को सलाह देने से पहले उसकी बात सुनना उसकी भावनाओं को समझना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हमें यही संदेश देता है कि एक संवेदनशील बातचीत समय पर मिला सहयोग और सही मदद किसी व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए आइए चुप्पी को तोड़े सुने समझे और जरूरत के समय साथ खड़े हो क्योंकि कभी कभी किसी से बस इतना कहना मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ उम्मीद की एक नई शुरुआत बन सकती है। तो दोस्तों आप सुन रहे थे सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा है और चर्चा है में हमने बातें की विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विषय में।

तो दोस्तों चर्चा है में हम बातें करेंगे एक और विषय पर, यानी कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और राष्ट्र निर्माता भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की और बाद में वकालत के साथ साथ देश और समाज की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। उनकी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गए। वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान वे घायल भी हुए थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने देश के प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। वे कमजोर वर्गों के हितों और समाजों में समान अवसर की भावना के समर्थक थे। बाद में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। इन्होंने राष्ट्र के प्रति योगदान को सम्मान देते हुए इन्हें 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में भी वर्ष 1957 में उन्हें भारत रत्न दिए जाने की अधिसूचना दर्ज है। इनका जीवन हमें बताता है कि राष्ट्र सेवा केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर प्रशासन और राष्ट्र निर्माण तक उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न चरणों में देश के प्रति जिम्मेदारी निभाई। 10 सितंबर को उनकी जयंती पर हम उनके योगदान को स्मरण करते हुए यही संकल्प ले सकते हैं कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और जन सेवा की भावना को अपने जीवन में स्थान दे। इसी संदेश के साथ पंडित

गीतांजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

रे। तो दोस्तों सुरभी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बढ़ते हैं पहल की ओर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएम मुद्रा योजना की। देश में छोटे कारोबार और सूक्ष्म उद्यमों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल सन 2015 को की।

गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे छोटे उद्यमियों तक संस्थागत ऋण पहुंचाना है जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े छोटे व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कृषि से जुड़ी कुछ आय सृजन गतिविधियां जैसे डेयरी और मधुमक्खी पालन आदि भी इसके दायरे में आती हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। शिशु 50,000 रुपये तक का ऋण, किशोर 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक, तरुण 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक, और तरुण प्लस 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक। तरुण प्लस श्रेणी उन उद्यमों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है। इस योजना के तहत ऋण देने का काम अधिकृत ऋणदाता संस्थाओं जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक और इन संस्थाओं के माध्यमों से किया जाता है। ऋण की ब्याज दर संबंधित ऋणदाता और लागू नियमों के अनुसार होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना है और उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर देना भी है। योजना के तहत अब तक करोड़ों ऋण खातों के माध्यम से छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिली है। मार्च 2026 तक योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक ऋण खाते और लगभग 40.07 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण की जानकारी सरकार ने दी है। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए उपलब्ध औपचारिक ऋण विकल्पों में से एक हो सकती है। हालांकि ऋण लेने से पहले अपनी जरूरत, चुकाने की क्षमता, ब्याज दर और संबंधित बैंक या ऋणदाता की शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। इसी संदेश के साथ आज के पहल कार्यक्रम में इतना ही। तो दोस्तों, सुरभि कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए

0: गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: Women, we opened their bank accounts.
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has held high-level bilateral meetings with his counterparts from Malaysia, Timor-Leste and Myanmar. The meeting was held on the sidelines of the 9th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry in New Delhi. During his meeting with Malaysia's Agriculture and Food Security Minister, Malaysia Mohammed bin Sabu, Mr. Chauhan noted the importance of sharing knowledge, expertise and best practices. Timor-Leste's Agriculture Minister, Mr. Marcos da Cruz, expressed interest in building strong institutional mechanisms between both sides to address various challenges in agriculture and ensuring food security for the nation. Meanwhile, Mr. Chauhan held a meeting with the Agriculture Minister of Myanmar, May Now. During the meeting, the minister noted that the Memorandum of Understanding between the two countries is at an advanced stage of finalization for strengthening the cooperation in agriculture and allied sectors.

0: material and deploying 54 expert personnel to support search, rescue and forensic operations. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal and Bihar for next 3 to 4 days. The flood situation in Bihar improved slightly as water levels receded in several rivers. Relief and rescue operations have been intensified, a report.
1: Flood situation has improved slightly in the state as water levels in the Ganga, Son, Punpun, Gandak and Bagmati rivers have receded. Relief and rescue work has been stepped up. More than 4 million people in 14 districts including Patna, Vaishali, Saran, Munger, Bhagalpur and Arwal are affected by floods. Relief camps are providing food, medical camp and essential supplies. Hundreds of houses have been damaged while nearly 700 rural roads remain underwater, affecting road connectivity. Road Construction Minister Engineer Kumar Shailendra has asked officials to keep a close watch on the roads and repair them as soon as the water recedes. The Education Department is also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concern in Baltara, in Khagadia and Kursela in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhishri for Akashwani News.
0: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्री

0: एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि

0: गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
1: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव

0: सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम्स से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग

0: और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे মিডিয়াম ওয়েব 297.6 মিটার্স অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে তবলা পরিবেশন করবেন অরিন্দম চক্রবর্তী, তাল ঝাপতাল। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেছেন সনাতন গোস্বামী। শুনুন তবলা।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হলো সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার্স অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। একটু পরেই শুনবেন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে শক্তি সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं, इसलिए टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी विचार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं असीमित हैं।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।
2: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड, वी एम टू एस्टेब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान के विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 5:21 और 6 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी इस ओर इशारा कर रही है कि शुरू हो चुका है कार्यक्रम उर्वशी, और उर्वशी के अंतर्गत आप सभी के लिए प्रस्तुत है आज का सेगमेंट यानी कि उड़ान। दोस्तों, इस चैनल और कार्यक्रम को आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं, और आज उर्वशी के उड़ान के अंतर्गत किस व्यक्ति या यूं कह सकते हैं किस शख्सियत के विषय में होंगी बातें, इसे जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, और ये इंतज़ार जो है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुरीला है। तो फिलहाल आप सभी के लिए पेश है एक गीत, और गीत के ठीक उस पार हम बातें करेंगे कि आज किस खास शख्सियत पर होंगी ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, और आप सभी के लिए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर के साथ उदित नारायण की फिल्म लगान से।

अभी आप सुन रहे थे ओ पालनहारे लगान फिल्म से, जिसमें आवाज़ थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की। दोस्तों, भारतीय संगीत की जो परंपरा है ये इतनी समृद्ध है कि इसमें कुछ स्वर ऐसे हैं जो केवल कानों तक नहीं पहुंचते बल्कि सीधे हमारे दिल को, हमारे हृदय को छू लेते हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिसे सुनना केवल संगीत सुनने के लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजरने के समान होता है। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के विषय में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने संगीत के साथ हमारे दिलों में जगह बना ली। स्वर साधिका की बातें कर रहे हैं जिसका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। दोस्तों, संगीत की दुनिया में उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ MS के नाम से जाना जाता है और उनका पूरा नाम था मदुरै षणमुख वार्तिवु सुब्बुलक्ष्मी, यानी MS सुब्बुलक्ष्मी। वो कर्नाटक संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक मानी जाती थीं और साथ ही साथ उनकी आवाज़ में भक्ति थी, शास्त्रीय संगीत की गहराई थी, शब्दों की स्पष्टता थी और भावनाओं की ऐसी सच्चाई थी कि उनकी प्रस्तुति सुनने वाला हर व्यक्ति स्वयं को संगीत से जुड़ा हुआ मानने लगता था। MS सुब्बुलक्ष्मी केवल एक गायिका नहीं थी बल्कि वे भारतीय संस्कृति की एक ऐसी प्रतिनिधि थीं जिन्होंने संगीत के माध्यम से पूरे भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जो है देशों की सीमाओं से बाहर तक, यानी विदेशों तक भी पहुंचा दिया। अगर बात की जाए उनके बचपन और संगीत के संस्कार की तो MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को उस समय के जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मदुरई में हुआ था। उनका परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था और उनकी माता षणमुख वाद्युवी अम्लान वीणा वादक थीं और संगीत की अच्छी समझ रखती थीं। घर का वातावरण ही ऐसा था कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन गया था। छोटी सुब्बुलक्ष्मी की अगर बात की जाए तो संगीत को किसी सामान्य विषय की तरह वो नहीं सीखती थी बल्कि उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को आत्मसात किया, अपने भीतर उसे ग्रहण किया और फिर उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगी। कहा जाता है कि उनकी आवाज़ में बचपन से ही एक असाधारण मिठास थी और स्वाभाविकता भी थी, लेकिन केवल प्रतिभा होना काफ़ी नहीं होता। प्रतिभा को साधना, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता भी होती है और इसीलिए सुब्बुलक्ष्मी ने क्या किया, उन्होंने साधना की और अपनी आवाज़ को बनाया अपने अभ्यास से और भी बेहतरीन। उन्होंने कम उम्र में ही कर्नाटक संगीत की गंभीर शिक्षा शुरू कर दी और उनके लिए रियाज जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। सुबह की साधना, संगीत की बारीकियों को समझना, रागों का अभ्यास और मंच पर प्रस्तुति, इन सब ने धीरे धीरे एक एक करके जो उनकी प्रतिभा थी उसको और भी आगे बढ़ाने का काम किया। और फिर MS सुब्बुलक्ष्मी ने बहुत ही कम उम्र में सार्वजनिक मंच पर अपनी प्रतिभा का परिचय देना भी शुरू कर दिया। उस दौर में किसी लड़की का इतनी कम उम्र में बड़े मंच पर आना और शास्त्रीय संगीत की गंभीर प्रस्तुति देना अपने आप में एक असाधारण बात थी, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी प्रभावशाली थी कि संगीत जगत ने उन्हें शीघ्र ही पहचान लिया और उनकी आवाज़ में एक खास तरह की निर्मलता थी जिसे सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। वे जटिल शास्त्रीय रचनाओं को भी इस तरह प्रस्तुत करती थीं कि अनुभवी संगीत प्रेमी उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते और सामान्य श्रोता भी उन्हें अपने साथ जुड़ा हुआ मानते थे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं MS सुब्बुलक्ष्मी की, जिन्होंने अपने आवाज़ के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम जो है उसे रोशन किया, हमारी संस्कृति को रोशन किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई।

अभी आप सुन रहे थे एमएस सुबुलक्ष्मी की आवाज गिरधर गोपाला 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। और इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और कार्यक्रम जारी है उर्वशी के अंतर्गत, आप सुन रहे हैं उड़ान, जिसमें हम आज बातें कर रहे हैं एमएस सुबुलक्ष्मी की। एमएस सुबुलक्ष्मी ज्ञान, सरलता और संगीत साधना का एक ऐसा अद्भुत संतुलन उन्होंने बनाया था कि मद्रास संगीत जगत में उनकी अलग पहचान बन गई। उस समय दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत की एक मजबूत परंपरा थी और मद्रास, जिसे आज चेन्नई के नाम से हम जानते हैं, संगीत और कला का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यही एमएस सुबुलक्ष्मी की प्रतिभा ने व्यापक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनकी प्रस्तुतियों ने उन्हें संगीत जगत में तेजी से स्थापित किया और आवाज में शास्त्रीय अनुशासन भी था, लेकिन उसमें भावनाओं की ऐसी गहराई भी थी जो कि जो भी सुनता था उनकी आवाज़ को, उनके उनके संगीत को, वो सभी श्रोता उनके मतलब उनके दिलों में कहीं ना कहीं एमएस सुबुलक्ष्मी की एक खास जगह बन जाती थी। और उनकी गायकी में राग की शुद्धता, स्वर की सटीकता और साथ ही भाव की शक्ति भी सुंदर रूप में दिखाई देती थी। साथ ही अगर बात की जाए उनकी संगीत साधना की, तो एमएस लक्ष्मी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार था उनकी साधना। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि महानता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती है, बल्कि प्रतिभा एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसे महानता तक पहुंचने के लिए अभ्यास, अनुशासन और समर्पण की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से उन्होंने साधना के माध्यम से, एमएस सुबुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत की परंपरा को बहुत ही गंभीरता से अपनाया। उनकी गायकी में कृति, राग, ताल, स्वर साधना और भाव की अभिव्यक्ति का बहुत ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वो केवल सुरों को सही ढंग से प्रस्तुत करने के पर ही ध्यान नहीं देती थी, बल्कि ये भी समझती थी कि संगीत का उद्देश्य श्रोता के भीतर भाव जगाना भी होता है। और यही कारण था कि उनकी भक्ति संगीत की प्रस्तुतियाँ विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। भक्ति संगीत और सुबुलक्ष्मी की अगर बात की जाए, तो उन्होंने अपने नाम के साथ भक्ति संगीत का नाम बहुत ही गहराई से जोड़ा। उन्होंने विभिन्न जो भारतीय भाषाएं थीं, उन सभी भाषाओं में भक्ति रचनाएं भी गाईं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी उनकी रचनाएं, उनकी आवाज़ ने बहुत ही खूबसूरती से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी प्रस्तुतियों में मीरा के भजन विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए और जब वे भक्ति की रचना गाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे मानो शास्त्रीय संगीत और आध्यात्मिक अनुभूति एक साथ मिल गए हों। उनकी अगर प्रसिद्ध प्रस्तुतियों की बात की जाए, तो वैष्णव जंतो, भज गोविंदम और विष्णु सहस्त्र नाम से जो जुड़ी उनकी रिकॉर्डिंग थी, वो बहुत ही खास स्थान रखती हैं। और उनकी आवाज़ में भक्ति का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि भक्ति का अनुभव भी हमें मिलता है। एक आवाज़ जो है, उसकी मधुरता के साथ साथ उसका आध्यात्मिक होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक भजन के लिए, और ये ही कला उनकी विशेषता थी। महात्मा गांधी और एमएस सुबुलक्ष्मी की अगर बात की जाए, तो एमएस सुबुलक्ष्मी का संगीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवादी सांस्कृतिक वातावरण से भी जुड़ गया। महात्मा गांधी को उनके भजन गायन विशेष रूप से पसंद थे और एमएस सुबुलक्ष्मी के द्वारा जो गाए गए भक्ति गीत थे, उन्हें अनेक लोगों के मन में आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय भावना की जो मजबूती, उसको मजबूती दी। और यहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एमएस सुबुलक्ष्मी ने राजनीति को अपना क्षेत्र बिल्कुल नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उनके संगीत ने राष्ट्रीय भावना जो थी वो लोगों में गाने का काम किया।

अभी आप सुन रहे थे हरी तुम हरो। ये जो आप भजन सुन रहे थे एम एस सुबुलक्ष्मी की आवाज़ में, ये बेहद ही खूबसूरत था। तो दोस्तों आपको बताएं कि आज हम बातें कर रहे थे एम एस सुबुलक्ष्मी के बारे में। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:48 और आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और मीरा और राष्ट्रीय पहचान की अगर बात की जाए, मीरा जो फिल्म थी वो फिल्म एम एस सुबुलक्ष्मी के लिए बेहद खास थी, क्योंकि दक्षिण भारत के जो संगीत को वहाँ पर उसकी छुअन वहाँ देखी जा सकती है। और साथ ही फिल्म के माध्यम से उन्होंने फिल्म की जो एक खूबसूरती है उसको इंक्रीज भी किया, उसे बढ़ाया भी, क्योंकि एम एस सुबुलक्ष्मी की आवाज़ और मीरा का जो किरदार जो फिल्म में दिखाया गया था उसकी खूबसूरती बेहद ही ज़्यादा मतलब लोगों द्वारा पसंद की गई। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक गौरवपूर्ण अवसर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1966 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रस्तुति दी थी, एक खास संगीत प्रस्तुति थी, और इस प्रस्तुति

स्तुति ने भारत का नाम संयुक्त राष्ट्र तक रोशन किया था। भारत सरकार ने एमएस सुब्बुलक्ष्मी को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में उन्हें भारत रत्न मिला था और उन इसके अलावा भी उन्होंने कई जो अवार्ड्स हैं वो जीते थे, क्योंकि उनकी रचनाएं, उनकी खूबसूरती अपने आप में उनकी आवाज़ के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, फिलहाल चलते चलते आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में, एक उर्वशी के अंतर्गत इस विशेष कार्यक्रम को आप सुन रहे थे 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर। और आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:50 और 7 सेकंड। अब से कुछ ही देर में हम लेंगे एक ब्रेक। इस गीत के ठीक उस पार आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम और उसके बाद आपसे मेरी जो मुलाकात है वो मुलाकात होगी 6:10 पर वार्ता के अंतर्गत। लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए प्रस्तुत है एमएस सुब्बुलक्ष्मी की आवाज़ में मेरे तो गिरधर, ये जो गीत है इसे सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को अभी के लिए इजाजत। फिलहाल पेश है आप सभी के लिए ये गीत।

0: Stand by for the news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
2: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said, India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said, the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS Summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's major emerging economies. India is the current chair of the influential grouping. Top leaders of the grouping, including Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, will be attending the BRICS summit. Chinese Foreign Ministry today said President Xi will be arriving in India this week to take part in the summit at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit comes amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. Earlier this week, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal in a media briefing had said Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders on the sidelines of the BRICS summit. Delhi police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit, giving details about the security arrangements. Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by the Aga Khan Development Network. She said it demonstrates how non-profit organizations working in partnership with the government can improve people's quality of life. During Prince Aga Khan V's interaction with the Vice President at Upra Rashtrapati Bhavan, the two leaders discussed the Aga Khan Development Network's contributions to water and sanitation, women-led self-help groups, education and community development. Prime Minister Narendra Modi said during their meeting, they discussed ways to further strengthen India's partnership with the Aga Khan Development Network. Secretary of Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar today reviewed the functioning of all media units of the ministry operating in Kashmir. The secretary reviewed news and programs of Akashvani and Doordarshan and took stock of the campaigns and outreach activities of press

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 आप सुन रहे हैं 297.6 meter यानी 1008 kHz पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आप सभी के लिए वार्ता। वार्ता के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और समय पर मदद व संवाद के महत्व के बारे में। कहते हैं जब शरीर बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन थक जाता है, मन परेशान होता है या भीतर से बोझिल महसूस करता है तो हम उतनी सहजता से मदद मांगने के लिए नहीं पहुंचते। अक्सर इस प्रश्न का अगर जवाब पूछा जाए कि क्यों नहीं पहुंचते हैं मदद मांगने या फिर हम किसी से मदद क्यों नहीं मांगते हैं, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, शारीरिक तकलीफ होने पर डॉक्टर तक पहुंचना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अपनी मानसिक पीड़ा, अपने मानसिक परेशानियों को दूसरों के सामने लाना या दूसरों तक पहुंचने देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसकी विशेष वजह होती है एक तरह से ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, कभी ये सोचकर कि ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और कभी कभी हमें ये लगता है कि हमें पता नहीं क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, यहीं से आज इसी विषय पर हम बातें शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होता है। मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो शारीरिक रूप से भी हमारी अस्वस्थता कहीं ना कहीं दिखने लगेगी। मानसिक स्वास्थ्य का अक्सर संबंध इस बात से भी होता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे समझते हैं। तमाम जो तनाव होते हैं या फिर तमाम जो चुनौतियां होती हैं उनका सामना हम कैसे करते हैं, दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं और कैसे अपने दैनिक जीवन में किस तरह संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे कि शरीर को आराम देना, पोषण देना, देखभाल करना, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम अगर ये नहीं कर पाते हैं, अगर हम अपने मन की देखभाल और अपने तन की देखभाल नहीं करते हैं, इसका मतलब है हम हो सकता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहीं अटके हों। कभी कभी हम खुश होते हैं, कभी कभी हम दुखी महसूस करते हैं, कभी उत्साहित तो कभी चिंतित। कभी हमें किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है और कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक ही है। इन्हीं भावनाओं का होना अपने आप में असामान्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब कोई परेशानी लगातार बनी रहे, हमारे रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे, हमें लगे कि हम अकेले ही इसे संभाल नहीं पा

रही हैं, तब मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मन की परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अगर इसे नज़रअंदाज करते हैं तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे समाज में शारीरिक स्वास्थ्य पर बात करना अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो या फिर मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो तो हमारा जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अक्सर हम जब भी किसी मानसिक रूप से तनावग्रस्त व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात आती है, या हम उससे कह भी देते हैं कि तुम आखिर इतना क्यों सोचते हो। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कंफर्ट ना फील करे तो आपसे अपनी बात नहीं शेयर करेगा। हम कह सकते हैं कि अगर तुम बात करना चाहो तो मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ, और इस तरह की बातों से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, शुरू हो सकता है, जिसके सहारे हम सामने वाले व्यक्ति के तनाव को भले ना कम कर सकें पर उसकी मानसिक दुविधा को कम करने में अपना रोल ज़रूर अदा कर सकते हैं। और अगर बात की जाए संवाद की, तो संवाद बेहद शक्तिशाली होता है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, और ना ही सिर्फ संवाद का अर्थ होता है सुनना। कई बार किसी व्यक्ति को तुरंत समाधान नहीं चाहिए होता है, उसे केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसके सामने वो बिना मजाक बने, बिना जज किए गए उसकी बात सुन ले, और बिना उसकी तुलना किसी से किए हुए एक संवेदनशील बातचीत की शुरुआत हो सके। बहुत साधारण शब्दों से कि तुम कैसे हो, इस शब्द से ही बातों की शुरुआत हो, लेकिन सामने वाला उस कंफर्ट जोन में पहुंच जाए जहां पर उसे मौका मिले अपने मन की बात खुलकर बोलने का। कई बार तनावग्रस्त व्यक्तियों को कभी कोई हल पाने की या कोई रास्ता पाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जो उसकी बात सिर्फ इत्मीनान से सुन ले। सुनना भी एक मदद के समान होती है, और कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी साझा करते समय उससे सलाह नहीं चाहता है, बल्कि चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं को छोटा न समझा जाए, और साथ ही साथ उसका ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुम्हारी बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, ये कई बार बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपके सामने कोई व्यक्ति परेशान दिखे तो उसे बिना जज किए, अगर हो सके बिना कोई सल्यूशन दिए, आप अगर सिर्फ उसकी बात सुन पाएं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोगों को ज़रूरत होती है सिर्फ एक सुनने वाले की, और वो सुनने वाला व्यक्ति एक कंफर्ट जोन के साथ अगर उसके सामने हो तो वो उसके लिए बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही खास बन जाता है। क्योंकि कई बार जो लोग हैं वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं हर किसी से, कंफर्ट जोन नहीं तैयार हो पाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो ऐसे में संवाद का होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई व्यक्ति अगर उसे संवाद करने के लिए मिल जाए, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात या फिर अपनी कोई ऐसी बात जो वो किसी और के सामने ना कह सकता है उसे कह ले, तो उसे काफ़ी हल्का भी महसूस होगा, और कहीं ना कहीं उसके मन में जो तनाव है उसकी मात्रा काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से शरीर के बीमारी का इलाज संभव है, ठीक उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के लिए भी पेशेवर सहायता आजकल हर जगह उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को उसकी मानसिक परेशानी के कारण शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई व्यक्ति उसे शर्मिंदा करे, क्योंकि वो जिस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है उसे और भी कठिन बनाया जा सकता है अगर उसे हम शर्मिंदा कर दें। हम बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति का सहारा बनना है, ना कि शर्मिंदगी पहुंचाने का या उससे शर्मिंदा करने का कोई जरिया बनना है।

0: अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बहुत ज़्यादा तनाव में है, उदासी है, चिंता है, भावनात्मक परेशानियां महसूस कर रहा है और इसका असर उसकी पढ़ाई, उसके काम, उसकी नींद या फिर उसके रोज़मर्रा की गतिविधियों पर पड़ रहा है, तो ऐसे में हमें उसे किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करवाना चाहिए ताकि ये मदद उसको काफ़ी हद तक सहायता दे सके बेटर बनने की। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बेहतर बनना चाहता है तो उसे सहायता मांगने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे विशेष वार्ता, जिसमें आज हमारा जो विषय था उस विषय में हम बातें कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य और समय पर मदद के साथ संवाद के महत्व की। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिना शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पेरिस नगरे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलनम संबोधितवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैज्ञानिक तथ्यानां उपयोगे पारदर्शितायाः सत्यनिष्ठायाश्च आवश्यकतामपि प्राधान्येन असौ प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः लोकहितैषिणा प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह संजाता मन्त्रणा। अत्रावसरे स्वास्थ्यरक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युवमहिला सशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचारविनिमयः। मातृशिशुकल्याणक्षेत्रे अथ असञ्चारिरोगाणां नियन्त्रणे भारतस्य अभूतपूर्व स्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्राशंसयत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ। अद्य ओडिशाराज्ये तीव्रात् अतितीव्रवृष्ट्यै ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तसञ्चेतना प्रख्यापिता। अपि च महिला एशिया चषकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीय दलं दुबई नगरे अद्य सायं बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उद्घोषितं यत् भारतं अन्ताराष्ट्रिय विधेः संवादस्य बहुपक्षीय सहयोगस्य च आधारेण सुरक्षितस्य शान्तिपूर्णस्य शाश्वतस्य च अन्तरिक्षमण्डलस्य दृढं समर्थनं विधत्ते। असौ अवोचत् यत् वैज्ञानिकतथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्रलोककल्याणाय विनियुक्तानि भवेयुः। प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलने आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् एतत् प्रतिपादितवान्।
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अन्तरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह सङ्घर्षस्थाने सहयोगः, अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता, बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य अन्तरिक्षयात्रा अस्यैव तत्त्वज्ञानस्य प्रतीकभूता वर्तते। शताब्देभ्यः अन्तरिक्षमस्माकं कल्पनां प्रेरयति स्म। अद्य च तत् जलवायुसदस्यादिभ्यः आरभ्य सागरान् जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्या

अलीशा चुनाई की आवाज के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जी हाँ गुल गुलशन। और दोस्तों आपको बता दें 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल और कार्यक्रम गुल गुलशन को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका और आप सभी के लिए बेहतरीन तराने हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो आइए सुनते हैं अलीशा चुनाई के बाद राघव माथुर को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुल गुलशन देविका के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे इस गीत को, अगले गीत की ओर करते हैं रुख, कैलाश खेर की आवाज में, तेरी दीवानी।
1: मोहे ऐसी लागी

इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आप सभी के लिए अंतिम गजल लता मंगेशकर, आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में कार्यक्रम गुल गुलशन में।

0: अचानक अचानक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाजसेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS Summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit, beginning at Bharat Mandapam on Saturday, brings together the world's major emerging economies. India is the current chair of the influential grouping. Top leaders of the grouping include Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin will be attending the BRICS Summit. Chinese Foreign Ministry today said President Xi will be arriving in India this week to take part in the summit at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit comes amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. Earlier this week, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal in a media briefing said Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders on sidelines of the BRICS summit. Delhi police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit. Giving details about the security arrangements, Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by Aga Khan Development Network. She said it demonstrates how non-profit organizations working in partnership with the government can improve people's quality of life. During Prince Aga Khan V's interaction with the Vice President at Uparashtrapati Bhavan, the two leaders discussed the Aga Khan Development Network's contributions to water and sanitation, women-led self-help groups, education and community development, and appreciated its initiatives in East Africa and Afghanistan. Prime Minister Narendra Modi said during their meeting, they discussed ways to further strengthen India's partnership with the Aga Khan Development Network. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said that India is the world's third largest startup ecosystem with more than 2,30,000 startups. The minister today launched the curtain raiser for the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave 2026 in New Delhi. He said more than 50% of startups are now coming from small towns and not metros, which reflects the widening reach of entrepreneurship and innovation across the country. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. Now India will face the winner of the quarter-final clash between South Korea and Malaysia in the semi-final on Saturday. The Indian men's team has already entered the semi-finals of the Junior Asia Cup. In women's cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final of Asia Cup in Dubai at 8 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
4: Akashvani Kolkata অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্জয়িতা আব্রুজার তরঙ্গী মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন দ্বিজেন্দ্র গীতি শুনবেন তন্দ্রা পালের কণ্ঠে।

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम दर्पण में। दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट देविका।

0: दोस्तों, दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत सबसे पहले आप सभी के लिए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम का फर्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं एक नज़र, और एक नज़र के अंतर्गत आज हमारे पास दो विषय हैं आपसे बातें करने के लिए। दोस्तों, आज गोविंद वल्लभ पंत जयंती है और आज हम इस खास विषय पर, इस खास व्यक्तित्व पर करेंगे बातें, क्योंकि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और राष्ट्र सेवक पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जो जयंती है वो आज के दिन मनाई जाती है, यानी 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और बाद में वकालत के साथ साथ देश सेवा के कार्यों में सक्रिय हो गए, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने शासन के विरोध आवाज़ जो है वो बुलंद की, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने निभाई। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, आज 10 सितंबर है और आज विश्व भर में मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैली गलत धारणाओं और कलंक को कम करना, और साथ ही ज़रूरत के समय पर सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और कई बार जीवन में ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जब व्यक्ति खुद को बहुत अकेला या निराश या असहाय महसूस करता है। ऐसे में बातें करना कितना जरूरी है ये याद दिलाने के लिए ये विशेष दिवस है। दोस्तों, इस विशेष दिवस पर आज आप सुनेंगे एक विशेष भेंट वार्ता, जिसमें बातें होंगी अभिषेक हाजरा के साथ तलत सलाउद्दीन की। यह कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: कुछ लफ्ज अपने आप में ही इतने नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि उसे जबान में लाने पर ही खौफ आता है। हालांकि कुछ हकायक ऐसे हैं जिससे नजरें नहीं चुराई जा सकती। बहुत सी चीजें हमारे आसपास होती रहती हैं और कभी कभी हमारी लापरवाही के नतीजे में वो हादसे का शिकार हो जाती है। जिंदगी निहायत ही कीमती शय है और ऊपर वाले का हसीन तोहफा है, जिसे हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है, और कोई भी गम और हालात इसकी इजाजत नहीं देते कि हम ऊपर वाले के तोहफे के साथ बेईमानी करें। इसका हमें कोई हक नहीं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अभिषेक हंसदा जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऑफिसर हैं। अभिषेक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, हमारा मुद्दा इन दिनों हर किसी के जबान पे चर्चे पे है, सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल मनाया जाता है। अभिषेक जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि ये बात इन दिनों इतनी ज्यादा चर्चे में?
2: देखिए, ये तो कुछ नया टॉपिक नहीं है और नया कुछ चीज नहीं है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, मगर मैं मेरे तजुर्बा से बोल सकता हूँ लास्ट 10 to 15 ईयर से पूरे दुनिया में पहले से ही मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट रहता था। अभी इंडिया में भी लास्ट 10 to 15 ईयर से मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस दे चुका है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इसलिए हम लोग भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, समझते हैं जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेंटल हेल्थ ये ऐसा एक टॉपिक है, एक अम्ब्रेला है, जहाँ पे एक सबसे इसको खत्म नहीं कर सकते हम लोग कोई। और मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल हेल्थ से जुड़ा नहीं रहता है, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ा रहते हैं। वो आपके कार्डियोलॉजी बोलिए, आप गाइनोकोलॉजी बोलिए, एक बच्चे बोलिए, आप ऑन्कोलॉजी में बोलिए, हर डिपार्टमेंट के साथ मेंटल हेल्थ जुड़ा रहता है, क्योंकि आपका मन सही है तो आपका शरीर भी सही है, मन खुश है तो शरीर भी चलता रहता है, मन अगर दुखी है तो हम लोग शरीर भी छोड़ देते हैं, और मन के ऊपर हम लोग की इम्यूनिटी पावर भी डिपेंड करता है। आपका मन सही रहता है तो बॉडी की इम्यूनिटी भी डेवलप होता है, हम लोग के जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो भी थोड़ा सिक्रिय ज्यादा होता है, पॉजिटिव हार्मोन जिस वजह से हम लोग की इम्यूनिटी इंक्रीज होते हैं और बॉडी फाइट करने लगते हैं। तो ये सबको भी समझ में आ रहा है, और ये क्या होता है अपकमिंग में एक बॉन्डिंग, एक टॉपिक है, बॉन्डिंग एक फील्ड है जो यहाँ पे मेजोरिटी लोग फंस चुके हैं। और ज्यादा स्ट्रेस होने से क्या होता है, वहां से आपको कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी डेवलप होता है, आपको शुगर डेवलप होता है, सारे चीज डेवलप होता है, तो आपको फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रहा है। अब मन दुखी होने से क्या क्या होता है, लोग नशे में चले जाते हैं, जैसे अभी आप सुसाइड बोले, ये भी लोग करने चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को पूरे वर्ल्ड बोलिए, दुनिया बोलिए, उसके साथ हम लोग के भारत बोलिए, हम लोग के सरकार बोलिए, सबने इसको फोकस दिए है और ये प्राइमरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में है अभी के लिए।
1: अगर देखा जाए कि सुसाइड को हम लोग एक छोटे वर्ड में समझा नहीं सकेंगे, इसके बहुत सारे कारण हैं। कोई मेडिकल इश्यूज होता है, सोशल प्रेशर होता है, इकोनॉमिक प्रेशर है, बहुत सारा। तो इसके क्या क्या कारण है?
2: कारण देखिए, कुछ एक कारण से कुछ नहीं होता, कारण बहुत सारे हैं और बहुत सारे मिलके एक इफेक्ट होता है जहाँ पे लोग जाके सुसाइड ये अटेम्प्ट करते हैं, क्या कर लेते हैं। अगर हम लोग खुद को पूछेंगे, हम लोग हमारे आसपास जितने भी हम लोग के फ्रेंड्स बोलिए, दोस्त बोलिए, जो परिवार के लोग बोलिए, जिसको जिसको पहचानते हैं हम लोग, कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन में हर एक इंसान ये दुनिया में कभी ना कभी एक बार ने एक बार सोचे जो और नहीं हो रहा, इससे अच्छा तो मर जाते तो अच्छा होता। तो ये क्या होता है, जो सुसाइड बहुत सारे कारण से होते हैं, जहाँ पे आप एक साइकोलॉजिकल सोचिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वहाँ पे इसका एक कारण होता है, डिप्रेशन में होते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है वहाँ पे देखा जाते है, सिजोफेनिया में होते है, और ये छोड़ के बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी होता है, जहाँ पे आपका फैमिली होता है, कोई अपना पर्सन चला गया है जो मैं मान नहीं पा रहा हूँ और जिसके बिना मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ये होता है। किसी का ब्रेकअप हो गया जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको लग रहा है अभी क्या है। किसी के इकोनॉमिकल प्रेशर होते हैं, जहाँ पे हम लोग फार्मर को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग आईटी सेक्टर में भी बहुत सारे देखते हैं, जो किसी का नौकरी चले गया ये डिसीशन के वजह से, कुछ कारण के वजह से, तो वो लोग ने किसी ने सुसाइड कर लिए। स्टूडेंट के अंदर जाते हैं तो स्टूडेंट के भी देखते हैं, जो स्टूडेंट लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो ये ना एक होलिस्टिक एक प्रेशर रहते हैं उन लोगों के ऊपर, और जहाँ पे इनको लगता है जो और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग फंस गए, एक टनल विजन जैसे होते हैं, जैसे वो घोड़े के पास लगा रहते हैं ना, जो घोड़ा एक ही चीज देखते हैं और कुछ नहीं है दुनिया में, वो छोड़ के, वो रास्ता छोड़ के। तो उस टाइम में ना हर आदमी के अंदर ऐसा वाला एक विजन डेवलप हो जाता है, उसको लगता है और कुछ नहीं है मेरे पास, मैं चला जाऊंगा तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा होगा और मेरे घर वालों के लिए भी अच्छा होगा, इतना पेन मैं नहीं ले पा रहा हूँ और घर वालों को भी पेन नहीं देना है। और अगर देखा जाए तो सच में उतना कुछ नहीं हो रहा है, मगर उसको लगता है ये हो रहा है, जिसके कारण है वो विजन एग्जीक्यूशन, जो मेरा पास एक प्रॉब्लम आया है तो उसको मैं कैसे सॉल्यूशन में जाऊं, अगर नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, दूसरे कुछ करूंगा, मुझे वो करना ही है, किसी ने मुझे तो सौगंध नहीं दिया, किसी ने मुझे तो कसम नहीं दिया जो मुझे करना ही है, मुझे इतना आन करके लाना ही है, ये तो मैंने जब मेरा जन्म हुआ था मैं किसी से एग्रीमेंट करके नहीं आया था ना, जो मुझे ये करना ही है। सोचिए मुझे डॉक्टर बनना ही है, जैसे स्टूडेंट लोगों के पास प्रेशर रहते हैं फैमिली से, आसपास के लोग, तुमको डॉक्टर और इंजीनियर, अरे ये छोड़ के भी तो बहुत सारे स्ट्रीम है जहाँ पे आराम से लोग गुजारा करते, आराम से लोग चलते हैं, तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बहुत सारे आईएफएस है, प्राइवेट जॉब है, बहुत सारे लुक्रेटिव चीज है। अब हर पेरेंट्स को पूछेंगे तो क्या डॉक्टर क्या इंजीनियर, ये क्या मैं एग्रीमेंट करके आया था जब मैं जन्म लिया था जो मुझे यही बनना है। तो ये एक होलिस्टिक प्रेशर होता है और जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, इसको हम लोग कॉग्निटिव एरर भी बोलते हैं, जो वो थॉट से वो लोग नहीं निकल पाते, वो नेगेटिविटी से नहीं निकल पाते, जहाँ पे ये डेवलप हो जाते।
1: तो ऐसे बच्चों के साथ जहाँ सोशल या फैमिली प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं।
2: एकदम ऑब्वियसली, आपके पास जब रिसोर्स नहीं रहेगा, आपके आसपास के लोग ही तो आपके मेन सपोर्ट सिस्टम है, प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम है, सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या काउंसिलर है, जो साइकियाट्रिस्ट है, जो लोग मेंटल हेल्थ लेके काम करते हैं, हम लोग सेकेंडरी में आते हैं, क्योंकि प्राइमरी जो होता है वो घर वाले होते हैं, जिनके पास वो लोग पहले जाते हैं, वहां से घर वाले हम लोगों के पास लेके आते। अगर घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के जो रिलेटिव है, वो लोग अगर ये चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे हम लोगों के पास आएंगे? इसका इम्पोर्टेंस ही अगर वो लोग नहीं समझ रहे, जो कुछ नहीं होते छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, तो ये बोलने से कैसे चलेगा? मेंटल हेल्थ को अगर हम लोग रिस्क फैक्टर को पकड़े, क्या क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोले जो स्किजोफेनिया, बाइपोलर, ये जो डिजीज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूशन होते हैं, एक वॉइस आता है कान में जो खुद जाओ, तो ये बीमारी के वजह से लोग ऐसे स्टेप ले लेते हैं, कर जाते हैं जहाँ पे उनको वो रियलिटी टच नहीं रहता है। डिप्रेशन में क्या होता है, लोग इतना लोनलीनेस डेवलप हो जाता है तो उसको वो अकेलापन महसूस होता है, जो मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, एक होपलेसनेस आता है, मैं रह के क्या करो, मेरा कोई अहमियत नहीं है, तो ये सारी चीज में जाके लोग फिर एंड में सुसाइड कर लेते हैं। ये तो क्या है, डिजीज रिलेटेड, मतलब साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम डिसऑर्डर है वो कनेक्टिंग, ये छोड़ के भी लोग सुसाइड करते हैं जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, उस वहां पे आते हैं ये जो हम लोग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी बोल रहे थे, क्या जो इम्पल्सिविटी बोलते
1: जी।
2: किसी ने मोबाइल मांगा, उसके घर वाले नहीं दिए, कुछ कर लिए, गाड़ी मांगा, बाइक मांगा, घर वाले नहीं दिए तो सुसाइड कर लिए, तो ये जो इम्पल्सिव एक्ट है, तो ये इम्पल्सिव
1: एक्ट आउट ऑफ एंगर एकदम,
2: हाँ, जो ये रिजेक्शन ना नहीं सुन पाती ये लोग, जो मैं रिजेक्शन नहीं लेना, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए कैसे भी करके लाके दो,
1: तो ये एज ग्रुप ज्यादातर हम लोग टीनेजर्स को ही देखते हैं ज्यादा,
2: ये इम्पल्सिव ग्रुप जो है ये तो टीनेज में ही ज्यादा हम लोग देखते हैं, और ये लोग की ना आगे जाके इंक्रीज होते हैं, और ये भी आप हर किसी में नहीं देखेंगे, एक पेरेंटिंग स्टाइल से ये डेवलप होते
1: हैं। बट एक तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि ये तो नहीं पता है कि ये बच्चा ऐसा करेगा गुस्से में आके,
2: नहीं
1: तो
2: इनको पता रहता है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता है, ये जो मैंने बोला ये एक दिन किसी ने मांगा अचानक से जो मुझे मोबाइल दो और मैंने ये कर लिया, ये नहीं होता, एक दिन का नहीं है ये कहानी। क्या होता है, जब बच्चे कुछ मांगते हैं छोटे के टाइम में तो तुरंत दे दे, मांग रहे हैं तुरंत दे दे रहे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है जो मैं मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो ये कंडीशनिंग बिहेवियर हो जाते, उसको एक आदत पड़ जाती, वो ऐसे तरीके से ब्रेन सोचने लग जाते, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है इन लोगों के ऊपर। अगर कभी ना बोल जाए, बच्चे ने थोड़ा डिमांड और कर लिया, टेंट्रम कर लिया, तो तुरंत मम्मी पापा ने दे दिया, तो उनको समझ में आता है जब मैं ऐसे वाला बिहेवियर करूंगा तो ये लोग अनकंफर्टेबल होंगे तो मुझे दे देंगे।
1: इसी एज ग्रुप से डेवलप होना शुरू हो जाता
2: है ये एकदम, आप 4 साल 5 साल 3 साल से तो स्टार्ट हो ही जाता है, तो ये जाके जब इसका 10 साल 11 साल ऐसा हो जाता है, तब जाके इनका डिमांड का लेवल हाई होने लगता है, और इनका ये एग्रेसिव बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है, इम्पल्सिव बिहेवियर इंक्रीज होने लगता है, तो वहाँ पे जाके इन लोगों को कंट्रोल करना दिक्कत हो जाता है। मगर ये जब डेवलप हो रहा है, इनको जब समझ में आता है, घर वालों के भी ये समझ में आते हैं मगर उसको इग्नोर करते हैं, उसी टाइम अगर वो साइकोलॉजिस्ट बोलिए किसी के साथ कंसल्ट करे, उसको थोड़ा थेरेपी करे, तो वो ठीक हो सकते थे। हम लोग के पास कब आते हैं, जब ये लोग फुल डेवलप हो जाते,
1: जब वो एक डिजीज की शक्ल ले ले,
2: हाँ, जब वो लोग इम्पल्सिवली सोचे कुछ नहीं मिल रहा है तो दीवार में घुसी मार रहा है, क्या हाथ काट रहे है, पैर काट रहे है, अब देखेंगे बहुत सारे बच्चे बच्ची लोग कुछ हो गया तो वो लोग अपना हाथ काटते हैं, तो ये सारे इंडिकेशन है ये सारे चीजों का,
1: मैंने इसको मैं अटेंशन सीकर भी बोल सकती हूँ,
2: हाँ बोल सकते हैं, मगर ये मेनली क्या होता है, वो लोग ना नहीं सुन पाते, इन लोगों को रिजेक्शन नहीं लेना आता है।
1: अभिषेक जी, और एक और जो अटेंशन सीकर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो एक ऐसा ग्रुप भी देखते हैं जो थोड़ा अटेंशन पाने के लिए वो अटेम कर रहा है, उसे पता है कि मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का अटेंशन मिले,
2: एकदम जो ग्रुप को लेकर अभी डिस्कस कर रहे, तो ये लोग जो अटेम करते हैं, जो हाथ काटना, क्या पैर काटना, शरीर का डिफरेंट डिफरेंट हिस्से को ये काटते है ब्लेड से बोलिए कुछ नुकीले चीजों से, ये लोग अपने को मारने के लिए नहीं करते, इन लोगों का क्या होता है, वो जब तक नहीं कट करेंगे तो उसका मन शांत नहीं होता, ये डराने की कोशिश करते हैं, तो वो जाके फिर एक एक्सीडेंट के रूप में

0: वो घट जाता है। मेन ये वाला एज में ये होता रहता है। और बाकी के जो एज बोलिए, जहाँ पे हम लोग के समाज रहते हैं, हम लोग के घर वाले के बहुत सारे परेशान होते हैं घर वालों को लेके, नशा भी एक कारण होता है। जो नशे के वजह से क्या होता है, हम लोग के प्रॉब्लम्स की, हम लोग के सोचना, ये सब में कमजोरी आ जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कर लेते।
1: अच्छा, जब आपसे मैं बात कर रही थी तो मुझे एक ख्याल आ रहा था कि हाल ही में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में सुना कि वो सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी बनी। तो सुसाइड करने का स्टूडेंट्स में अगर मैं इस ग्रुप में देखती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कई बच्चे एग्जाम दिए हैं, कई लोग फेल हुए हैं, कुछ उसमें पास हुए, तो वो अकेला बच्चा तो नहीं है जो सफर कर रहा है, तो वो स्टेप वही क्यों उठा रहा है?
0: एकदम, ये आपने बहुत सही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा मुझसे। देखिए, ये जो सिचुएशन हम लोग सब बच्चे फेस कर रहे हैं, सोचिए 3 लाख 4 लाख बच्चे एग्जाम दिए।
1: अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत बेचारी बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है, उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उनको है कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा या मेरे पास टाइम नहीं है।
0: नहीं, आप देखेंगे अच्छा से, जो एकदम जो क्राइसिस वाला बैकग्राउंड से आते हैं, जो लोग यहाँ पे ट्राई करते उन लोगों में ये ज्यादा नहीं है। यहाँ पे ज्यादा आते हैं जिसके घर वालों से ज्यादा प्रेशर रहते, जो वही जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, जो मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है क्या इंजीनियर बनना है, और डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के दुनिया में और कुछ नहीं है, अगर तुम ये बन नहीं पाए तो तुम्हारा जीवन खत्म, और कुछ नहीं है लाइफ में। ये जब चीज घर वाले हमेशा बच्चे के कान के सामने बोलते रहते और फीट करते रहते हैं, ये एक बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है जब ये वाला चांस मेरा चला गया, इस बार तो मुझे चांस मिल गया था, नेक्स्ट टाइम अगर चांस नहीं मिले तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज पकड़ के रखा है, जो मुझे डॉक्टर ही बनना है।
1: हाँ, किसी भी सूरत में,
0: किसी भी सूरत में डॉक्टर नहीं बनेंगे तो मेरा लाइफ खत्म। अगर हम लोग के घर वाले तू ट्राई कर ले भाई, हो जाता है अच्छा, नहीं होगा तो दूसरा कुछ करना है, कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे तो वो सोच डेवलप नहीं होगा और कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। अरे तुम क्या, तुम तो स्टार्ट किए हो जीरो से।
1: बिल्कुल,
0: एक आदमी पैदा होता है तो क्या लेके पैदा होता है, वो क्या अल्फाबेट जान के पैदा होता है, सर्टिफिकेट लेके पैदा होता है, कुछ नहीं होते ना, हम लोग ऐसे ही आते हैं, जीरो बन के आते हैं और जीरो बन के जाएंगे। बीच में कुछ सीख लिए तो जो सीखा हुई हम लोगों के सक्सेस है ना, तो फेलियर कहाँ है लाइफ में, कहीं पे फेलियर नहीं है, क्योंकि आपके घर अगर देखिए, एग्जाम ड्रॉप होना, क्या एग्जाम में फेल होना, ये अगर मेन कारण होता तो सब बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता, सबके ऊपर नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, इसके मतलब उसका जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसके आसपास के जो लोग है ये बहुत सपोर्टिव है, उसका स्ट्रांग है, इसलिए वो अहमियत नहीं, ठीक है भाई ये एक एग्जाम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं प्रिपेयर होता हूँ, फिर मैं कर लूंगा, फिर से लोग एग्जाम दे दिए, डॉक्टर बन गए। अगर बीच में से हम लोगों ने कुछ अपना लोगों को खो दिया, और इसका मेन कारण मैं बोलूंगा ये जो फैमिली बोलिए, आसपास के लोग बोलिए, समाज बोलिए, रिलेटिव्स बोलिए, इन लोग,
1: सही बात है। अभी हम लोग हाल फिलहाल ज्यादा नोटिस कर रहे हैं कि अगर जैसे इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं, चारों इंसान के पास मोबाइल है और उनके पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं है, तो वो सारा वो आपसे मिलने आए हैं, लेकिन बस मिलने के बाद वो हाथ में मोबाइल आया, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पाड़ा कल्चर जो था, अड्डा कल्चर, वो चीजें खत्म हो गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है।
0: देखिए साइकोलॉजिकली तो ये इफेक्ट है, जब हम लोग भी ये टीनेज थे, छोटे थे, हम लोग पाड़ा में बैठते तो अड्डा मारते, रॉक में बैठते तो मजाक करते थे, हंसी करते थे, ये सारे में क्या होता था, हम लोगों का जो मन के अंदर दुख रहते थे, जो भी कष्ट होते थे, वो वहां से वेंटिलेट हो जाते थे, निकल जाते थे, तो हम लोगों को एक पॉजिटिविटी डेवलप होते थे, फिर वो लेके हम लोग आगे निकल जाते थे। उसके साथ क्या होते थे, बच्चे लोग खेलते थे, हम लोग खेलते थे रास्ते में, कोलकाता में तो मार्ट ज्यादा नहीं है, ग्राउंड ज्यादा नहीं, फिर भी जितने भी ग्राउंड थे हम लोग रास्ते में खेलते थे, हर रोज खेलते थे, रेगुलर बेस में खेलते थे। अभी अब खेलने लायक कोई स्टूडेंट नहीं देखोगे, कोई बच्चा खेल नहीं रहा है, सब वो सुबह से शाम कंधे में बैग लेके दौड़ते जा रहे हैं, फिर बैग रखते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर घर में आके पढ़ते हैं, फिर बीच में मोबाइल देखने लग जाते हैं, बस सो जाते हैं, ये साइकिल है। तो आपके पास रिक्रिएशन कहाँ है, अब इंटरेक्शन कहाँ कर रहे हो, अब गप्पे कहाँ मार रहे हो। देखिए हम लोग के हर इंसान के अंदर ना एक डस्टबिन रहते हैं, जहाँ पे हम लोग के जो भी नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो डस्टबिन में सब हम लोग जमा होते रहते हैं, तो उसको भी तो खाली करना है ना, उसको तो खाली करना चाहिए, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जब ओवरफ्लो हो जाते हैं तो लोग जाके ऐसे स्टेप लेते हैं। ये सारे चीज अभी खो रहा है, अभी सब सोशल मीडिया में अटके है, कितने लाइक मिले, कितने कॉमेंट्स मिले, ये सारे में अटक गए। आप बैड लेके

0: बैटिंग करने गए, एक छक्का मारोगे क्या एक चार मारोगे ये आपके हाथ में है, तो आप एक छक्का मारोगे तो आपके टीम जीत गए, आपको हाथ ताली मिले, ये आपके हाथ में है। मगर आपको एक फीड दिए, वो आपको कितने लाइक मिले, कौन लाइक करे का ना करे,
1: और इस कारण से कितने इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड भी करते हैं,
0: एकदम
1: कि मुझे उसमें इतना लाइक्स नहीं मिला या मेरे इतने ये फॉलोअर्स
0: कम हो गए। लोग एक सुपरफिशियल दुनिया में फंस गए और एक ये सुपरफिशियल लाइक यहाँ इस सारी चीज से ना अपनी इमोशन को जोड़ लिए है। अभी आप पूछ रहे थे ना मेंटल हेल्थ क्यों, ये जो सारे जो लाइफस्टाइल बन गए ना इस वजह से मेंटल हेल्थ और भी इम्पोर्टेंट हो गए। पहले क्या होता था, एक फैमिली में 10-12 लोग रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहते थे, तो हर किसी के साथ किसी ने डांटा तो और की इसके पास चले गए, वो सपोर्ट दे दिया, अरे ठीक है मैं हूँ, क्यों डांटा उसको, ऐसे बोल दिए, तो बच्चे लोग एक दूसरे में जाके वो घुल मिल जाके अपना वो दुख
1: बिल्कुल
0: निकल जाता था।
1: ग्रैंड पेरेंट्स है
0: एकदम है। अभी क्या हुआ, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, ठीक है मैं दुखी हो गया तो मैं सुसाइड करने जा रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं निकल जाता हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। किसी एक चीज के लिए कुछ नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं।
1: बच्चा देखें या घर में कोई बंदा अगर ऐसा देख रहे हैं कि वो खुद को अलग थलग कर दिया या किसी से मिलना नहीं चाह रहा, मैंने ये टेंडेंसी तो धीरे धीरे डेवलप होती
0: है,
1: तो
0: अचानक से नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: तो कैसे समझा जाए और कैसे इसका इससे ओवरकम किया जाए।
0: जो लोग इम्पल्सिव भी होते हैं वो एक दिन नींद से उठ के इम्पल्सिव नहीं हो जाते हैं, और जो लोग सुसाइड करने जाते हैं एंड ऑफ द डे में वो लोग भी एक दिन में उठ के नहीं करते। ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है और हर कोई चाहते हैं जीने के लिए, हर कोई ढूंढते हैं मुझे निकलना है, मगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, हम लोगों की ये बिजी शेड्यूल में सब भागते रहते ना, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, इस वजह से हम लोगों को वो समझ में नहीं आते। पहले के ज्वाइंट फैमिली में क्या था, जो कोई बच्चा बैठा है क्या कोई ऐसे ही बड़ा भी हो ऐसे शांति से बैठा है, तो कोई बुजुर्ग हो क्या कोई हो जाके बोल क्या हुआ, तो ऐसा क्यों बैठा है, कुछ हुआ क्या, बाहर कुछ हुआ क्या, घर में कुछ हुआ क्या, तो ऐसा पूछते हैं। जिसका जो बिहेवियर होता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाते है, कोई टॉकेटिव होते हैं तो वो शांत हो जाते है, अकेले में चले जाते है, ज्यादा बातचीत करना बंद कर देते है, ज्यादा इंटरेक्शन करना बंद कर देते है। मतलब हर इंसान का एक पर्सनैलिटी होता है, एक बिहेवियर पैटर्न होते, तो वो पैटर्न में चेंज आ जाता है, और वो पैटर्न का चेंज क्या होता है, रिग्रेसिव टाइप हो जाता है, मतलब पीछे आ जाना, डेवलप नहीं होते, मतलब वो जो था उससे वो पीछे आते जा रहे हैं। तो घर वाले उसको अगर आइडेंटिफाई करके बात करते तो उसको वो फील होता है, जो उसके जो अंदर चल रहा है वो वेंटिलेट होते हैं, तो उसके एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जब मैं हूँ नहीं सोचना है, चल हम लोग है ना देखते कुछ करते, तो ये जो बोलने से क्या होता है, एक सपोर्ट होता है जो हम लोगों को वो आगे जाने में हेल्प करता है।
1: अक्सर इस पर हम लोग बातें करते हैं कि एज ग्रुप के लेके बारे में बातें होती हैं कि ज्यादातर हम लोग देते हैं कि टीनेजर्स में ज्यादा हो रहा है सुसाइड ट्रेंड, हालांकि ये बोलना गलत होगा, हर एज ग्रुप में है, लेकिन ऐसा कोई डेटा है जो हमारे पास मौजूद है जिसको आप शेयर करना चाहें।
0: देखिए ऐसे तो एक एज ग्रुप जो है 18 से 45 बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा मिलता है, उसको भी अगर फिल्टर करेंगे तो 18 से 30 तक आता है, तो ये एज में सबसे ज्यादा आता है। और दो चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक है जो फार्मर के लिए, एक है आईटी प्रोफेशन के लिए, और एक है ये इम्पल्सिव ग्रुप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लोग काम करके मेहनत करके कुछ करते हैं तो उन लोगों के पास मॉरल वैल्यूज, जो रेस्पेक्ट होता है खुद के, जो इज्जत बोलते हैं हम लोग, तो ये इज्जत बहुत अहमियत रखते हैं। तो जब वो इज्जत में कोई हाथ डाल देते हैं तो उनके पास क्या होता है, जो मेरे पास और रहा क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों का मॉरल वैल्यूज बहुत हाई रहता है, तो ये मॉरल वैल्यूज में जब इसका हाथ आते हैं तो यहाँ पे जाके इन लोगों को दिक्कत होता है वो मानने के लिए, और वो मान नहीं पाते बोल के ये लोग जाके सुसाइड करते। कितने सारे लोग है देखिए, 100 करोड़ लेके भाग गए, बैठा है जेल में बैठा है, अपना अच्छा से खा रहा है, मजा कर रहा है, सुसाइड नहीं किया। अगर ये फार्मर लोग जिसके वजह से हम लोग
1: सेंसिटिव होते हैं
0: एकदम, और ये जो मॉरल वैल्यूज को कहाँ कहाँ छोड़ना है, ये हर टाइम ये अच्छा नहीं है, कभी छोड़ना भी चाहिए, तो इस वजह से वो लोग सोचने लग जाते, फिर ब्लॉक्ड हो जाता है माइंडली, फिर ये सोच सोच के क्या होता है, एक टाइम में जाके वो ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं।
1: अभिषेक जी एक और चीज जो मैंने ज्यादा नोटिस किया कि लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इस बंदे को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट कराया जाए, ये एक्सेप्टेंस आज भी हमारी सोसाइटी में नहीं है।

0: क्या होता है, हम लोग मेंटल हेल्थ बोली तो हम लोग के दिमाग में आते हैं ना, जो लेमेन लोग होते हैं तो वो पागल है, ठीक है, वो पागल है, मैं क्या पागल हूँ जो मैं पागल के डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे हर किसी का तबीयत खराब हुआ मतलब क्या कैंसर हो गया, ऐसा तो नहीं है, हार्ट अटैक हो गया ऐसा तो नहीं है, वो भी एक बीमारी है जिसको स्किजोफेनिया, बाइपोलर ऐसे सीरियस जो बीमारी होते हैं ये, और जिसको हम लोग रास्ते में घूमने देखते हैं, वो लोगों को कोई दवाई नहीं देते, ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको ट्रीटमेंट किया जाए 10 दिन के अंदर कोई पहचान नहीं पाएगा जो ये कल घूम रहा था इधर, तो पागल से कनेक्ट कर लेते, जो ये सबसे ज्यादा गलत फहमी है। तो आप लोग डायरेक्ट उनके पास चले जाइए, खुद से जाइए, किसी की जरूरत नहीं, आप अकेले जाइए, अकेले बात कीजिए, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी का जरूरत नहीं, कोई नहीं समझ रहा है, जरूरत नहीं है, आप हम लोगों के पास आ जाइए। हर हॉस्पिटल में, इवन की एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके एक मेडिकल कॉलेज में भी ये सारे फैसिलिटीज है।
1: बिल्कुल अभिषेक जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ कहने को था, बहुत कुछ सुनने को भी था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें यही रुकना पड़ रहा है। जिंदगी बहुत कीमती शय है और हम सबको इसकी पूरी हिफाजत करनी चाहिए। अभिषेक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे सुइसाइड प्रिवेंशन पर एक विशेष भेंट वार्ता अभिषेक हंसा के साथ तलत सलाउद्दीन की। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में, कार्यक्रम के पहले आप सभी के लिए कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत आज का अंतिम गीत।

0: এখন সমাচার সন্ধ্যা দিল্লি থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को

0: रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: इंडिया अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुम्बकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

0: के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार

0: ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। 0 हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate resilient villages and cities under zero casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul, including a gold. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश के हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है, तो कई तरह की सामाजिक

0: एक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी
0: और जो पशुधन है हमारे देश का, आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है। तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
0: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मुख्यतः, जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है, और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, और मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं, और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85 से 90% के आसपास दलहन भी बारहनी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है,
0: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं, और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन इस तरह हम बना के रखते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घ काल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती है, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती है?
0: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण, और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा यह है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है, यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहां पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
1: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
0: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का और इक्रीसेट जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद बेस्ड, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के

0: जो वैज्ञानिक गण हैं, किसान हैं जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश हैं जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रीडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उन पे मंथन करेंगे और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में, तो उस पे मंथन होगा क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे और जो ये फसल प्रणालियां हैं बारानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
1: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
0: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी। और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
1: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
0: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है, कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती, बीजीय मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर FPO का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और जो बारानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बारानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो, और ICRISET हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
0: ICRISET जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चला।

0: आया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, और आईसीआर का और जो इक्रीसेट का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके उस पे बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
0: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएआर और आईएआरआई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाए नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए। तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्ते तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हो उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सब का उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर वर्मा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

0: अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। भारत का लक्ष्य स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ पूरी मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उत्कृष्ट और कम लागत वाले अभियानों के कारण इसरो ने दुनिया भर में सम्मान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इसरो की क्षमताओं का लाभ किसानों और मछुआरों को मिल रहा है। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद अल जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। इसके बाद मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य का निर्माण विषय पर सत्र होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई है।

0: दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बो प्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच यमन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। खबरों के अनुसार हूती लड़ाकों ने यमन के रणनीतिक बंदरगाह शहर मोचा पर कब्जा कर लिया है और वे बाब अल मंदेब जल डबरों मध्य के करीब पहुंच रहे हैं। यह घटनाक्रम हूती और यमन के सरकारी बलों के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के दौरान सामने आया है। इससे वैश्विक समुद्री परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित, सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। यमन में लाल सागर तट के पास हूती विद्रोहियों की मौजूदगी के कारण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में खतरा बढ़ा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Houthis advance near Yemen's Red Sea coast, threatening Bab al-Mandeb Strait. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
4: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति

0: शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders, including

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।